0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखानी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनके और उनकी दिवंगत मां के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि इस घटना को देश और दुनिया के लोगों ने देखा है और समाज में इस तरह के व्यवहार पर आक्रोश और निराशा स्वाभाविक है, लेकिन बचपन सीखने, गलतियां करने और उन्हें सुधारने का भी एक दौर है।
1: बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है।
0: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सोशल मीडिया कंपनी मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। उनसे एल्गोरिथम में पूर्वाग्रह और सार्वजनिक व्यवस्था में उनकी भूमिका से संबंधित मुद्दों पर पूछताछ की जाएगी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मेटा की ग्लोबल टीम से अगले सप्ताह के मध्य में पूछताछ होने की संभावना है। टीम को संसदीय समिति के समक्ष भी पेश होना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित इस हवाई अड्डे को प्रतिवर्ष 60 लाख यात्रियों को संभालने के लिए तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री इस दौरान विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूर पहुंचेंगे। यहां वो स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। मंत्रिमंडल ने 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह निर्णय युवा विकास और राष्ट्र निर्माण के लिए खेलों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
2: कंप्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाएगा, स्टेडियम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो, मेंटोरशिप हो, उन सब के ऊपर एक बहुत केयरफुली क्राफ्टेड प्रोग्राम बनाया गया है। 29,000 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है 5 ईयर्स के लिए और ये सीधा वीविन करेगी ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और आगे कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाले हैं 2030 में भारत में, उन सब के साथ ये वीविन करेगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम से बात कर उन्हें पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी। कल सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने बताया कि बातचीत के दौरान दोनों नेता प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, शिक्षा और जनधन संबंधों जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने और भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर सहमत हुए। दिल्ली सरकार ने बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा का लाभ उठाने के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के अनिवार्य उपयोग की समय सीमा 16 अगस्त तक बढ़ा दी है। संशोधित निर्णय के अंतर्गत 15 अगस्त तक पिंक टिकट जारी किए जाएंगे। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने जूडो में पहली बार 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में स्वर्ण पदक जीते। भारत के अब तक कुल 23 पदक हो गए हैं, जिसमें 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मित्रांनो, तुम्हाला माहितीच आहे की सध्या राष्ट्रकुल स्पर्धा 2026 सुरू आहेत आणि या राष्ट्रकुल स्पर्धा 2026 ठळक घडामोडी रोज सकाळी 7:30 एफ एम रेनबो वाहिनीवरून प्रसारित होणार आहेत. अगदी काही क्षणात आपण ऐकू शकाल या ठळक घडामोडी. प्रतीक्षा करा काही क्षणांची.
1: The Commonwealth Games. Hello and welcome to analysis of Day 9 of Commonwealth Games 2026. The day bore witness to India's medal-winning exploits in judo and athletics.
2: खेलों के नवे दिन भारत के लिए बहुत कुछ दांव पर था और भारतीय खिलाड़ियों ने अपना दम खूब दिखाया. अपने दमकते प्रदर्शन से पदकों की संख्या बढ़ाई और साथ ही और तमाम पदकों की आस भी जगा दी. देशवासियों को गर्व से सीना चौड़ा करने का अवसर दे दिया. अब जब खेलों ने अपने समापन की ओर बढ़ने का सफर आरम्भ कर दिया है, भारतीय एथलीट इस समय अपने प्रदर्शन को शिखर पर ले जाने की जद्दोजहद में जुट गए हैं. पदकों की झोली जितनी भारी हो सके, उत्साह, उल्लास, गर्व और आनंद होने के क्षण उतने ही ज्यादा. बॉक्सर्स ने तो कमाल कर दिया, एक के बाद एक के बाद एक धमाकेदार जीत दर्ज कर फाइनल में एंट्री ली. एथलेटिक्स में हमारी आंखों के तारे नीरज चोपड़ा तो थे ही और उनके और साथी भी मैदान में थे. इसके अलावा भी बहुत कुछ था, तो चलते हैं कार्यक्रम में आगे की ओर. नवे दिन का पूरा लेखा जोखा.
1: It was a memorable day for India in boxing and judo, but with javelin action scheduled later in the day, the spotlight, even in our show, is understandably on Neeraj Chopra.

जेवलिन थ्रो की स्पर्धा बहुत कांटे की होने वाली है, ये बात तो क्वालिफाइंग चक्र में ही तय हो गई थी। नीरज चोपड़ा, श्रीलंका के रुमेश थरांगा, अरशद नदीम और पीटर्स एंडरसन, कई सितारे थे मैदान में। डबल ओलंपिक पदकधारी, एशियाई चैंपियन और भी न जाने कितने खिताब, नीरज चोपड़ा ने अपना पहला थ्रो 80.97 मीटर फेंका, दूसरा थ्रो 85.89

0: की। कभी बांस के भाले से सीखने की शुरुआत करने वाले और नेशनल लेवल के जेवलिन थ्रोअर पिता के लायक बेटे यशवीर ने अपने अंतिम प्रयास में पूरी ताकत लगा दी और 85.41 मीटर दूर भाला फेंक दिया, उनके करियर का सबसे अच्छा थ्रो, और इस थ्रो ने उन्हें बैठा दिया तीसरे स्थान पर, यानी रजत पदक और कांस्य पदक दोनों भारत के हिस्से में। एथलेटिक्स में डेकाथलॉन स्पर्धा बहुत कठिन स्पर्धा मानी जाती है। भारत के तेजस्विन शंकर को यही स्पर्धा पसंद है।
1: मैं ऐसे चैलेंजेस को हमेशा अपने मन में कुछ ना कुछ बनाते रहता हूँ कि नए नए चैलेंजेस मैं ऐड कर सकूँ और थोड़ी एक्साइटमेंट आए मेरी खुद की परफॉर्मेंस से। कॉमनवेल्थ गेम्स में मेरा गोल ही रहेगा कि डिकैथलॉन इवेंट में कम्पीट करना, क्योंकि वो सबसे टफेस्ट इवेंट होता है ट्रैक एंड फील्ड का, दो दिन आप कम्पीट करते हैं।
0: तेजस्विन का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा पहले सत्र में, पोल वॉल्ट खत्म होते समय वे चौथे स्थान पर सरक गए, जेवलिन के बाद एक बार फिर तीसरे स्थान पर आ गए और 7,976 अंक, आप इसको बुरा तो नहीं कह सकते, और ये अंक उनको तीसरे स्थान पर लाने के लिए पर्याप्त थे और साथ ही कांस्य पदक उनका हो गया। 4x400 मीटर मिश्रित रिले में भारतीय दल अंशा बाबू, रशदीप कौर, विशाल टीके और राजेश रमेश हीट नंबर 2 में चौथे और कुल मिलाकर 7वें स्थान पर आए और अंतिम 8 में यानी फाइनल्स में जगह बनाने में सफल रहे। वहीं 400 मीटर हर्डल्स के फाइनल में संतोष कुमार टी 50.37 सेकंड के साथ 7वें और यशाश पलाक्ष 8वें यानी अंतिम स्थान पर रहे।
2: ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय जूडोकास के लिए 31 जुलाई की शाम ऐतिहासिक रही, जहां अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने अपनी अपनी कैटेगरीज में गोल्ड मेडल्स हासिल किया। यामिनी मौर्या ने भी सिल्वर मेडल अपने नाम किया, जिससे जूडो कंपटीशन के पहले ही दिन भारत को 3 मेडल्स मिल गए। अस्मिता ने विमेंस 48 kg कैटेगरी में इतिहास रच दिया। फाइनल में कैनेडा की हेडी क्वाश के खिलाफ खेलते हुए उनका मैच काफी कठिन रहा और गोल्डन स्कोर तक गया, लेकिन अस्मिता ने इस निर्णायक मोड़ पर अपने नर्व्स होल्ड किया और इस वेट कैटेगरी में भारत के लिए पहला कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड पक्का कर दिया। साउथ त्रिपुरा के बिलोनिया की रहने वाली 23 साल की अस्मिता के लिए ये अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी है। एक बाइसिकल मैकेनिक की बेटी, अस्मिता पहले 800 मीटर दौड़ में हिस्सा लेती थी, जिसके बाद उन्हें जूडो से जोड़ा गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अस्मिता का प्रदर्शन लगातार बेहतर रहा है। 2026 एशियन चैंपियनशिप्स में 5वां पोजीशन हासिल करके उन्होंने पहले ही दिखा दिया था कि वो एशिया के सबसे बेहतरीन जूडो खिलाड़ियों से भी मुकाबला कर सकती हैं। ग्लासगो में उन्होंने इसी उम्मीद को कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड में बदल दिया। इसके बाद हर्ष सिंह ने मेंस 60 kg कैटेगरी में भारत के लिए जूडो में दूसरा गोल्ड अर्जित किया। इस प्रतियोगिता से पहले उन्होंने टोक्यो और ताशकेंट ग्रैंड स्लैम्स और एशियन चैंपियनशिप्स जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय इवेंट से अच्छा अनुभव हासिल किया था।
3: अच्छा फील हो रहा है इंडिया के लिए गोल्ड जीतने के लिए। मेरे को मौका मिला यहाँ पे आने के लिए और मैंने गोल्ड जीता, बहुत अच्छा लग रहा है। मेडल अपनी माँ को डेडिकेट करूंगा मैं।
2: इसके अलावा यामिनी मौर्या ने विमेंस 57 kg कैटेगरी में सिल्वर जीतकर भारत को 3रा मेडल दिलाया। फाइनल में इंग्लैंड की एसेलिया टोपरा के खिलाफ यामिनी ने कड़ी टक्कर दी, जो गोल्डन स्कोर तक गई, लेकिन अंत में इंग्लिश खिलाड़ी ने पेनल्टी के जरिए जीत दर्ज की। उनका यह ग्लासगो सिल्वर उनके पदकों के संग्रह में एक अहम अंतर्राष्ट्रीय मेडल जोड़ता है।
0: ग्लासगो में भारतीय मुक्केबाजों ने कमाल के मुक्के बरसाए हैं। 10 मुक्केबाज सेमीफाइनल चक्र में पहुंचे। जो भी भारतीय बॉक्सर रिंग में उतरा, अपने मुक्के हवा में लहराता हुआ जीत का निशान बनाता ही रिंग से बाहर आया और शुरुआत की 22 साल की प्रीति पवार, जिनके सामने थी जाम्बिया की कैथरीन मुआबे। बेतरह मुक्कों की बरसात में कैथरीन का सारा प्रतिरक्षण बहसा गया। 5-0 से जीत हासिल कर भारत का दिन का खाता खोला। 80 किलोग्राम में थे अंकुश पंघाल, कनाडा के जोशुआ ओफरी के विरुद्ध पहले राउंड से ही धावा बोल दिया और तीनों राउंड में लगातार हावी रहे। 5-0 से एक और आसान जीत। तो भरा राजस्थान की पहली अंतर

0: राष्ट्रीय बॉक्सर अरुंधति चौधरी क्यों पीछे रहती। उन्होंने वेल्स की रोजी इक्लेक्स को परास्त किया। अरुंधति ने 4-0 के निर्णय से इस बाउट को जीत लिया और फाइनल में एंट्री की।
1: द विनर इन द ब्लू कॉर्नर अरुंधति चौधरी।
0: जैस्मिन हुडा के विरुद्ध थी लेसोथो की रेप्लांग मासलेला। ये फाइट इसलिए बहुत दिनों तक याद रहेगी कि सिर्फ एक राउंड चली। जैस्मिन के जबरदस्त पंच और कॉम्बिनेशन प्रहार सीधे उनके चेहरे पर, वो गिर गईं। रेफरी ने फाइट रोक दी, कहा कि अब आगे खतरा है, यानी पहला नॉकआउट निर्णय। जदुमणि सिंह नामीबिया के फिलिप हाउसेप के विरुद्ध, वो रिंग में रेड कॉर्नर में थे। वही कहानी जो सुबह से शुरू हुई थी, उसका एक और अध्याय जदुमणि ने भी लिख दिया। 51 किलोग्राम भार वर्ग में जायंट किलर कही जाने वाली भिवानी की साक्षी चौधरी ने कनाडा की अंबर जेनवाल को 5-0 से ही हराया।
2: इट वाज अगेंस्ट कनाडा, ओपोनेंट वाज लिटिल शॉर्टर, सो आई हैव रीच एडवांटेज, सो आई मेंटेन माय डिस्टेंस एंड प्लेड काउंटर एंड आई सक्सेड इन दैट। आई वन द बाउट यूनैनिमसली 5-0। आई वांट टू रिप्रेजेंट माय कंट्री इन ओलंपिक्स एंड वांट टू विन गोल्ड मेडल फॉर माय कंट्री।
0: लगा कि विपक्षी क्या भारतीय मुक्केबाजों के आगे संघर्ष कर ही नहीं पा रहे हैं। शायद ये बात सच भी थी, क्योंकि अगली बाउट में प्रिया घंघास ने इंग्लैंड की लूसी किंग को एक बार फिर तीनों राउंड में रिंग में तिगनी का नाच नचा दिया। लवलीना बोरगोहेन, ये नाम ही काफी था तरुणा खानम के विरुद्ध। सुप्रसिद्ध लवलीना ने 75 किलोग्राम में आसानी से जीत दर्ज की, तो सचिन सिवाच को तो शुरू से ही डार्क हॉर्स कहा जा रहा था। वेल्स के ओवेन हैरिस को 5-0 से एक और जीत। अंतिम बाउट में 90+ किलोग्राम भार वर्ग में नरेंद्र बेलवाल थे पॉल निगल के विरुद्ध, ये भी 5-0 से जीते। तो बॉक्सिंग में शानदार प्रदर्शन, रिजल्ट 10-10, यानी सभी मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गए, एक अकल्पनीय सी बात। लेकिन आज तो सारी निगाहें स्वर्ण पदक की संख्या गिनने पर ही लगी होंगी।
3: सर क्रिस हॉय वेलोड्रोम में भारतीय साइक्लिस्ट के लिए 31 जुलाई का दिन चुनौतीपूर्ण रहा। मेंस 4000 मीटर इंडिविजुअल पर्स्यूट में दिनेश कुमार ने 4:29.267 का समय दर्ज किया और क्वालिफिकेशन स्टैंडिंग्स में 17th पोजीशन पर रहे। वहीं हर्षवीर सिंह सेखों ने 4:35.524 का समय रिकॉर्ड किया और 19th पोजीशन पर रहे। चूंकि सिर्फ शीर्ष के 4 राइडर्स ही मेडल रेसेस में आगे बढ़ते हैं, इसलिए दोनों इंडियंस क्वालिफाइंग राउंड में ही बाहर हो गए। वहीं मेंस केरिन में भी रोनाल्डो सिंह, डेविड बेकहम और जेम्स सिंह अपनी अपनी फर्स्ट राउंड हीट से डायरेक्टली क्वालिफाई नहीं कर पाए। तीनों को रेपेचार्जेस के जरिए एक और मौका मिला, लेकिन कोई भी सेकेंड राउंड में नहीं पहुंच सका। हर्षवीर बाद में मेंस एलिमिनेशन रेस फाइनल के लिए वापस लौटे। वो स्टार्टिंग स्टेजेस में रेस में बने रहे, लेकिन अंत में एलिमिनेट हो गए। बोल्स में भारत के लिए कल का दिन सफल रहा, जहां राउंड 4 में मेंस पेयर्स और विमेन सिंगल्स दोनों में सीधे सेट्स में जीत हासिल हुई। मेंस पेयर्स सेक्शन बी के मुकाबले में नवनीत सिंह और दिनेश कुमार ने फॉकलैंड आइलैंड्स के इयान बार्न्स और ओलिवर थॉमसन की जोड़ी को 2-0 से हराया। भारतीय जोड़ी ने आत्मविश्वास से भरी शुरुआत करते हुए पहला सेट 6-3 से अपने नाम किया। इसके बाद उन्होंने मैच पर अपनी पकड़ और मजबूत की और दूसरे सेट में 10-1 से एक तरफा दबदबा बनाते हुए आसान जीत। इस नतीजे ने भारत को क्वालिफिकेशन की रेस में मजबूती से बनाए रखा है। नवनीत और दिनेश इस सेक्शन में इंग्लैंड की बराबरी पर पहुंच गए हैं। हालांकि बेहतर शॉट डिफरेंस के कारण इंग्लैंड अभी भी आगे है, जिससे उनके आखिरी सेक्शनल मैच पर काफी कुछ दाव पर लग गया है। विमेन सिंगल्स में नयन मोनी साइकिया ने भी शानदार प्रदर्शन किया। जाम्बिया की मिल्ड्रेड के खिलाफ पहला एंड गंवाने के बाद उन्होंने जबरदस्त वापसी की और पहला सेट 17-2 व दूसरा सेट 11-2 से जीतकर 2-0 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। साइकिया अपने अभियान का अंत कल साउथ अफ्रीका की ब्रिजिट के खिलाफ मैच खेलकर करेंगी।
0: आज पुरुष ट्रिपल जंप में पदक के लिए कूद लगाएंगे प्रवीण चित्रावल और सेल्वा प्रभु। महिलाओं की 10,000 मीटर रेस वॉक में प्रियंका और रवीना होंगी। पोल वॉल्ट में देव कुमार मीणा और कुलदीप कुमार अपनी चुनौती पेश करेंगे। पुरुषों के 5,000 मीटर के फाइनल में कुलवीर सिंह होंगे और मिक्स की 4x400 रिले के फाइनल में होंगे अंशा बाबू, रजदीप कौर, विशाल टीके और राजेश रमेश। इसके अलावा पैरा खेल

0: में 1500 मीटर पुरुष T54 फाइनल में रमेश षणमुगम होंगे और पुरुषों के शॉर्टपट F57 यानी पैरा शॉर्टपट में शुभम जुआल और सोमन राणा होंगे भारत की ओर से।
1: टॉकिंग अबाउट बॉक्सिंग, वे स्टेपिंग इनटू द रिंग टू फाइट फॉर गोल्ड इन द फाइनल्स टुडे आर 10 इंडियन बॉक्सर्स। साक्षी 51 kg, प्रीति 54 kg, जैस्मिन 57 kg, प्रिया 60 kg, अरुंधति 70 kg एंड लवलीना बोरगोइन 75 kg इन द वुमेन्स कैटेगरीज अलोंगसाइड जादूमणि 55 kg, सचिन 60 kg, अंकुश 80 kg एंड नरेंद्र बेरवाल 90 kg इन द मेन्स डिविजन। मूविंग ऑन टू जूडो, वेयर स्टेपिंग ऑन टू द मैट टुडे आर उन्नति शर्मा वुमेन्स 63 kg एंड इनुन गांबी वुमेन्स 70 kg इन द वुमेन्स कैटेगरीज alongside Harsh Tokas, men's 81 kg, and Karanjit Singh Mann, men's 90 kg, in the men's division, with all four fighters looking to battle their way through the rounds and contend for medals. In action in track cycling today are David Beckham, Ronaldo Singh, and Rohit Singh in men's sprint, apart from Harshveer Singh Sekhon and Dinesh Kumar in men's 10-kilometer scratch race. In bowls, the men's pairs duo of Navneet Singh and Dinesh Kumar will be in action for round 5 of sectional play versus England, with the pair looking to secure a vital win to keep their hopes alive for a spot in the semi-finals. Meanwhile, Nayanmoni Saikia will sign off a campaign in round 5 of women's single sectional play.
2: Now let's talk about the medals at the Commonwealth Games. Australia leads the pack in the first place, England is second, and Canada hold third. Meanwhile, Team India ranks 10th with a total of 23 medals, securing 5 gold, 12 silver and 6 bronze so far.
1: With editor Swati Kapoor, producer Shahnawaz Khan, my co-host Anupam Pathak, it is me, Megha, signing off for now. We'd be back again tomorrow with our coverage of Day 10.
3: The Commonwealth Games.

0: तो गर्मियाँ शुरू हुई है और साथ साथ 1000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं। वीडियो संदेश में कहा, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए युवाओं को दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर, वे वहां कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता के खिलाफ जनता की कड़ी नाराजगी का प्रमाण। भारत ने ईरान से किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले न होने देने को कहा। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। जूडो में 2 ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीते। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यादगार दोहरा पोडियम स्थान हासिल किया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। ये विधेयक बृहस्पतिवार को संसद से पारित किया गया था। इसका उद्देश्य कठोर दंड का प्रावधान करने और फास्ट्रैक अदालत बनाकर लोक परीक्षाओं में अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। यह अधिनियम विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा करते हुए एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करके परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्षता और सत्य निष्ठा को सुदृढ़ करने का प्रयास करता है। अधिनियम में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति की जब्ती जैसे कठोर दंड शामिल हैं। मामलों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट्रैक अदालत स्थापित करने की आवश्यकता है। इसमें यह भी अनिवार्य है कि प्राथमिकी दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर अपराधों की जांच पूरी की जाए, जबकि आरोप पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त किए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनके और उनकी दिवंगत माता के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि इस घटना को देश और दुनिया के लोगों ने देखा है और समाज में इस तरह के व्यवहार पर आक्रोश और निराशा स्वाभाविक है, लेकिन बचपन सीखने, गलतियां करने और उन्हें सुधारने का भी एक दौर है।
3: बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े।
2: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सोशल मीडिया कंपनी मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। उनसे एल्गोरिदम में पूर्वाग्रह और सार्वजनिक व्यवस्था में उनकी भूमिका से संबंधित मुद्दों पर पूछताछ की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी पहले आंध्र प्रदेश जाएंगे, जहां वे विजयनगरम जिले के भोगपुरम में करीब 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री भोगपुरम स्थित अल्लूर सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: इस नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को सार्वजनिक निजी भागीदारी द्वारा 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित किया गया है। प्रधानमंत्री विशाखापत्तनम में 460 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से विकसित की जा रही ASIP सेमीकंडक्टर परियोजना की आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी कुर्नूल 4 नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के एकीकरण के लिए 4.5 गीगावाट क्षमता वाले ट्रांसमिशन सिस्टम के प्रथम चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इसे पावर ग्रिड द्वारा एक विशेष प्रयोजन वाहन द्वारा लगभग 5,550 करोड़ रुपए के से कार्यान्वित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री लगभग 3,550 करोड़ रुपए की लागत से कार्यान्वित कुर्नूल पवन ऊर्जा क्षेत्र और सौर ऊर्जा क्षेत्र भाग ए और भाग बी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम का भी उद्घाटन करेंगे। वे अनंतपुरम में 2,500 मेगावाट और कुर्नूल में 1,000 मेगावाट के सौर ऊर्जा क्षेत्रों के लिए पावर ग्रिड द्वारा 800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के कार्यान्वित ट्रांसमिशन सिस्टम का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी 1,880 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। विजयवाड़ा से अलू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
2: आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूरू पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे।
5: प्रधानमंत्री द्वारा आज उद्घाटन किए जाने वाले विवेका स्मारक स्वामी विवेकानंद के विचार और सिद्धांत के प्रचार कार्य के लिए बनाया गया है। 75 स्क्वायर फीट में फैले इस स्मारक के साथ 4D एक्सपीरियंस सेंटर, प्रदर्शनी स्थान, एम्फी थिएटर, पाठशाला, कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्रंथालय, ध्यान और योगा केंद्र भी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण आश्रम की ओर से यहाँ शिक्षा के साथ युवाओं को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
2: पश्चिम बंगाल में आज से जनगणना शुरू हो रही है। ये प्रक्रिया 2 चरणों में डिजिटल माध्यम से संपन्न की जाएगी। इस प्रक्रिया का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से अद्यतन जनसांख्यिकीय आंकड़े एकत्र करना है। 2 चरणों वाली ये प्रक्रिया राज्य में व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है।
6: पहले चरण में नागरिक आज से 15 अगस्त तक आधिकारिक जनगणना पोर्टल se.census.gov.in पर अपनी जानकारी देकर सेल्फ इन्यूमरेशन करने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इस चरण का दूसरा भाग 16 अगस्त से 14 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान जनगणना अधिकारी मकान सूचीकरण और शुरुआती गिनती के लिए घरों का दौरा करेंगे। आखिरी चरण अगले साल फरवरी में होगा, जब जनगणना करने वाले कर्मचारी वास्तविक जनसंख्या गणना के लिए प्रत्येक घर के हर सदस्य के नाम, उम्र, लिंग, जाति और धर्म के बारे में जानकारी एकत्र करेंगे। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
7: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में तथाकथित चुनाव के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता को नकारे जाने का प्रमाण है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पीओजेके में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों का पाकिस्तान लगातार दमन कर रहा है।
2: पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण नागरिकों के खिलाफ लगातार निर्मम बल रूथलेस फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है और इस सख्त कार्रवाई में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और कई एक और लोग घायल हुए हैं। एक हिंसक शासन का सामना करते हुए वहां के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन से गैर कानूनी हत्याओं की स्वतंत्र जाँच की मांग की है। हम आग्रह करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान की हरकतों की बारीकी से जाँच करनी चाहिए और उसके अत्याचारों के लिए जवाबदेह जाना चाहिए।
1: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल शाम ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से फोन पर बात कर पश्चिम एशिया क्षेत्र में जारी तनाव पर चिंता व्यक्त की। डॉ जयशंकर ने किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले न होने देने को कहा। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी पक्ष द्वारा किए गए ऐसे किसी भी हमले की निंदा करता है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने कल जूडो में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण पदक जीते। भारत ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यादगार डबल पोर्ड में फिनिश हासिल की। डेगाथलॉन में पहला कांस्य पदक जीता और 10 मुक्केबाजों ने अपनी अपनी स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाई। एक रिपोर्ट।
3: अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में भारत के लिए पहले राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अस्मिता ने महिलाओं का 48 किलोग्राम वर्ग का खिताब जीता, जबकि हर्ष ने पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। यामिनी मौर्य ने महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। एथलेटिक्स में ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 85.83 मीटर के साथ रजत पदक जीता, जबकि यशवीर सिंह ने 85.41 मीटर के थ्रो के साथ कांस्य पदक जीता। तेजस्विन शंकर डेकाथलॉन में कांस्य पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। भारत के 10 मुक्केबाजों ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत अब कुल 23 पदक के साथ तालिका में 10वें स्थान पर है, जिसमें 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डेकाथलॉन स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर एथलीट तेजस्विन शंकर को बधाई दी है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंध्रीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, केरल और माहे में मूसलाधार वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी आज बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
4: जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और उनकी माता के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले बच्चों के लिए श्री मोदी का बयान अनेक अखबारों की हेडलाइन है। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम पर कहा, हमें इन गुमराह बच्चों को माफ करना चाहिए। पत्र ने अंदर के पृष्ठ पर आप बीती शीर्षक से छात्रों के प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों का वक्तव्य दिया है। वर्दी के पीछे भी एक परिवार होता है। दैनिक भास्कर ने परिजनों की पीड़ा का उल्लेख किया है, पिता को भीड़ ने खींचा, खून से सनी वर्दी में घर लौटे। आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन सहित 5 को उम्र कैद की सजा की खबर भी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण लिखता है, अदालत ने कहा, अंकित शर्मा की हत्या इतनी क्रूर और बर्बर कि समाज की अंतर आत्मा को झकझोर देती है। पत्र ने अपने संपादकीय में लिखा है, अदालत के फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीदें बंधी। दंगों में धर्म के नाम पर आम लोगों को निशाना बनाया गया, जिसके जख्म आज भी हरे हैं। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार तो है, पर इसकी आड़ में उपद्रव फैलाने की छूट किसी सूरत में नहीं दी जा सकती। कुलगांव में आतंकी हमला, मजदूर की मौत, नवभारत टाइम्स के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला लिखता है, कश्मीर में आतंकियों के नाम पूछकर बरसाई गोलियां, प्रवासी की मौत, टीआरएफ ने ली जिम्मेदारी। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल को जूडो में पदक मिलने की अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स लिखता है, जूडो में अस्मिता हर्ष की स्वर्ण गाथा, जीते 2 गोल्ड मेडल। अमर उजाला ने हर्ष सिंह और अस्मिता का चित्र देते हुए लिखा है, 92 साल में पहली बार देश को जूडो में स्वर्ण, पहली बार जिंदा दिल लेकर दौड़ी वंदे भारत, लोक सत्य में है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं। वीडियो संदेश में कहा, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए युवाओं को दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता के खिलाफ जनता की कड़ी नाराजगी का प्रमाण। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Naresh Margo. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for compassion and guidance for misguided youth. Says hatred and abuse never solve anything. President gives assent to anti-paper leak bill, introducing stricter punishment and setting up of fast-track courts. Prime Minister to launch multiple development projects in Andhra Pradesh and Karnataka today. India raises concerns over ongoing hostilities in West Asia region, urges Iran to avoid attacks on commercial shipping and seafarers. Italy suspends free border travel with Spain over Ceuta migrant crisis. And at Commonwealth Games, India clinched 2 historic gold medals in judo, secured double podium finish in men's javelin throw and win a first ever bronze in decathlon. Prime Minister Narendra Modi has said that abuse and hatred never solve anything. He appealed for compassion toward misguided youth who've gone astray, saying they should be guided onto the right path in the spirit of nation building and national interest rather than be punished. In a video message posted on his social media handles, the Prime Minister referred to the recent incident at Jantar Mantar in national capital, where abusive language was used against him and his late mother. He said the episode has been witnessed by people across the country and the world, adding that while the anger and disappointment in the society over such conduct were understandable, childhood is also a phase of learning, making mistakes and correcting them.
6: बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है, उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना।

0: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर. शनिवार की खूबसूरत सुबह, और इस शनिवार की खूबसूरत सुबह में दिल ठहरता नहीं है. वैसे तो हम सब ठहर जाते हैं, लेकिन दिल जो है वो ठहरता नहीं है. आज भी कोई फसाना सुनाने को बेचैन है मेरा दिल आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर, जिसका प्रसारण आप सुन पा रहे हैं आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी. न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर आप हमें लगातार सुन सकते हैं 24/7, क्योंकि हम आपके साथ जुड़े रहते हैं दिल से दिल तक. तो फिर आज खोलेंगे दिल का कोई ज़रूर एक फसाना, किसी एक ऐसे इंसान का जिसने अपनी सोच को ताकत बना दिया. और आज इस मस्त मुंबई के दिल के फसाने में आपके साथ जुड़ी हुई है आपकी दोस्त माला.

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो 107.1 FM पर। कार्यक्रम चल रहा है मस्त मुंबई दिल का फसाना, और आज दिल के फसाने में आपके साथ है आपकी अपनी दोस्त माला। वैसे दिल का फसाना सिर्फ इश्क की कहानी नहीं होता, कभी कभी ये जिम्मेदारी की आवाज़ भी होता है। कुछ लोग अपने लिए जीते हैं और कुछ लोग ऐसा काम करते हैं कि पूरा देश उनसे आगे बढ़ जाता है। आज की जो कहानी है ना, वो एक वैज्ञानिक की कहानी है जिसका दिल भारत के भविष्य के लिए धड़कता था। ज़रूर बताएंगे उनके बारे में हम आपको, लेकिन आपके बारे में हम पहले आपको बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे लिसनर्स जो हैं शनिवार की इस खूबसूरत सुबह में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंजू अंधेरी से पंकज महोट गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, प्रमोद चिंचोलकर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और विजेंद्र घटोल अकोला से, महेश भाटकर सांता क्रूज से गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, फिरोज सिगेनपुरिया अपने ग्रुप के साथ, वर्ल्ड म्यूजिक लवर ग्रुप इनका है, महेश बोहरा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं अजमेर राजस्थान से। वैदेही सुबह की खूबसूरत अगस्त की पहले दिन की शुभकामनाएं हम तक पहुंचा रही हैं आपको भी वैदेही। चेतन कुमार मानपुर बाजार गया बिहार से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपा बालकर माहिम से एज यूजुअल गाने सुन रही हैं, एंजॉय कर रही हैं। रजनीकांत पाटिल वाड़वन से जुड़ गए हैं। इसी तरह जुड़े रहिए, सुनते रहिए आपका अपना FM रेनबो, क्योंकि शनिवार की जो सुबह है उसे बनाने के लिए आपके साथ आ गई है आपकी दोस्त माला।

तो भाई अर्ली मॉर्निंग जो है हो चुकी है, सुबह हो चली है 9:02 और ठीक 6 सेकंड हो रहे हैं। आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो आपने ट्यून इन किया है 107.1 FM पर और कार्यक्रम चल रहा है मस्त मुंबई। गुड मॉर्निंग है सुबह की, शनिवार की सुबह की आप सभी को। ये प्रसारण आप सुन पा रहे हैं आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 144 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर भी, न्यूज ऑन एयर ऐप पर आप हमें लगातार सुनते रहते हैं। और आज मस्त मुंबई में आपकी दोस्त माला दिल का फसाना सुनाने जा रही है आपको, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का, जिनका जन्म हुआ 30 अक्टूबर 1909 को आमची मुंबई में। दुनिया की बेहतरीन लैब्स जो हैं वो उनके लिए खुली हुई थी, लेकिन उन्होंने अपनी रिसर्च के लिए चुना भारत को। और 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी TIFR की स्थापना की और आगे चलकर भारत के परमाणु कार्यक्रम की नींव भी उन्होंने रखी। उनका सपना था विज्ञान सिर्फ ताकत नहीं, राष्ट्र निर्माण का हथियार बने, और यही था उनके दिल

0: I cannot sleep.
1: तो भाई आज तो सोने की बात तो अभी नहीं करेंगे क्योंकि अब तो उठने का समय हो चला है. शनिवार रात में अभी थोड़ा टाइम है, लेकिन गाने ने आपका मूड तो सेट कर ही दिया होगा. दीपा पालकर लिख रही हैं कि भाई होमी जहांगीर भाभा जो हैं वो भारत के अणु ऊर्जा के जनक भी कहे जाते हैं. उन्होंने ट्रॉम्बे में अणु संशोधन केंद्र की स्थापना की थी जिसे भाभा अणु संशोधन केंद्र भी कहते हैं. वहीं पंकज महोड़ को कार्यक्रम पसंद आ रहा है, गाने भी पसंद आ रहे हैं. प्रमोद चिंचोलकर जो है उमरिया खोला से हमारे साथ जुड़ गए हैं और शनिवार का जो गाना आपने लगाया है वो बहुत ही उन्हें पसंद आया है. विजेंद्र खटोल अकोला से गाने की प्लेलिस्ट पसंद कर रहे हैं. प्रदीप अनंत कृष्णन एज यूजुअल अपने प्यारे से मैसेजेस के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं और जरूर पढ़ेंगे आपका मैसेज. श्रेय राउत, मिलेश गजानन राउत भी जो है हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ में आर्य मिलेश राउत टिगरेपाड़ा से ये लोग हमें सुन रहे हैं. आदर्श कनौजिया सुन रहे हैं मुंबई दादर से और ये मैसेज है गणेश पाटिल का वार्ड वन से. साथ में रोशन पाटिल भी सुन रहे हैं. तो आज मस्त मुंबई दिल का फसाना होमी जहांगीर भाभा के लिए. वो सिर्फ एक वैज्ञानिक ही नहीं थे, वो भारत के एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम के आर्किटेक्ट भी थे. उन्होंने 1954 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और बार्क यानी BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर

यानी देश की वैज्ञानिक रीढ़ की स्थापना की। उनका मानना था अगर भारत को आत्मनिर्भर बनना है तो विज्ञान को विदेशों की दहलीज पर नहीं अपनी मिट्टी में उगना होगा। और शायद यही वजह है कि मुंबई की इस धरती से उठी उनकी सोच आज पूरे भारत को रोशन कर रही है।

भाई बातें ही करने के लिए आज आपके साथ जुड़ी हुई आपकी दोस्त माला, आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो 107.1 FM पर रजनीकांत पाटिल वार्डवन जो है वो क्रियांश के साथ हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं वार्डवन से, और सुनील गायकवाड़ जो है साथ में जुड़े हुए हैं, सुषमा, अनन्या, राजवीर, और ये कार्यक्रम रोज सुनते हैं और इन्हें सभी कार्यक्रम जो है पसंद आते हैं, और महाराष्ट्र के पुणे से ये हमें सुन रहे हैं। वहीं मंगेश जोशी जो है वो भी रोहा रायगढ़ से कार्यक्रम रोज सुनते हैं। आदर्श कनौजिया तो सुन ही रहे हैं, और ये मैसेज हमारे पास है आदिनाथ चौधरी अहल्यानगर से हमें सुन रहे हैं, गुड मॉर्निंग उन्होंने भेजा है। शुभ लक्ष्मी मस्तकार भी जुड़ चुके हैं राम प्रजापति वसई से, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस घंटे में हमारे साथ जुड़ने के लिए आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो पर। दिल का फसाना मस्त मुंबई चल रहा है, साथ बनी हुई लगातार आपके आपकी दोस्त माला, और हम आपको बता रहे हैं डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा के बारे में, जिनका जन्म हुआ 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई में। और हमने आपको बताया कि वो सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं थे, वो भारत के एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम के आर्किटेक्ट भी थे। डॉक्टर होमी भाभा कहते थे कि भविष्य उन्हें मिलता है जो आज से उसकी तैयारी करते हैं। तो इस साल अपने दिल के फसाने को टालिए मत, सोचिए, सीखिए और शुरुआत कीजिए, क्योंकि विज्ञान हो या जिंदगी, तरक्की उसी की होती है जो डर से नहीं विश्वास से चलता है। कुछ लोग इतिहास में सिर्फ दर्ज नहीं होते, वो इतिहास की दिशा बदल देते हैं, और दिल का फसाना भी वहीं पूरा होता है जहां सपने से देश बन जाता है। मस्त मुंबई सुन रहे हैं आप अपनी दोस्त माला के साथ, जुड़े रहिए, सुनते रहिए, क्योंकि जब आप आएंगे तो इस तरह के खूबसूरत नगमे जरूर हम आपको सुनाएंगे।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

वैसे शनिवार की सुबह जो है वो थोड़ी सी सुस्त होती है, क्योंकि कुछ लोग छुट्टी बना रहे होते हैं, सैटरडे का हॉलिडे मना रहे होते हैं। लेकिन हमने कोशिश की है कि इसे भी पूरी तरह से एनर्जेटिक बना दें। अगर आप घर पर भी हैं या काम पर भी हैं तो भी। दीपा पालकर ने लिखा है कि होमी भाभा का एक थॉट उन्होंने हम तक पहुँचाया है, मेरी सफलता उस पर निर्भर नहीं कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, मेरी सफलता मैंने किए हुए मेरे जो काम है उन पर निर्भर करती है। वहीं श्रीधर मोजारकर जो हैं वो शनिवार की शुभकामनाएं हम तक पहुंचा रहे हैं। रजनीकांत पाटिल वाड़वन से वो ये कह रहे हैं कि आपने क्रियांश का नाम लिया तो वो बहुत खुश हो गया। और ये मैसेज हमारे पास पहुंचा है फिरोज सिगिनपुरिया की तरफ से। वो कह रहे हैं कि भाई अगस्त का महीना आ गया है, 31 दिन तक सूरज चमकता रहेगा, सफलता, अच्छी यादें और एक अच्छा

महीना जो है वो साथ में हम लोग बिताएंगे मिलकर। ये मैसेज हम तक पहुंचाया है फिरोज सिकंदपुरिया ने। काजल कक्कर चेंबूर से हमारे साथ चाय के प्याले से जुड़ गई हैं। महेश बोरा अजमेर राजस्थान से, और गानों का कलेक्शन और जानकारी जो है वो उन्हें पसंद आ रहा है। विजेंद्र घटोल अकोला से कह रहे हैं कि भाई इंजॉय कर रहे हैं अपने खेत में फार्मिंग करते हुए और शो उन्हें पसंद आ रहा है। प्रमोद गारखाने पूरे से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम अठावले जो हैं कार्यक्रम इंजॉय कर रहे हैं। विद्या अठावले मिरज से ये लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ऐसी उम्मीद करते हैं कि इसी तरह आप हमारे साथ जुड़ते रहें प्यार से, और हम भी कोशिश करते हैं क्योंकि आपके अपने पसंदीदा चैनल एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर हमारा यही प्रयास होता है कि आपको कुछ ना कुछ नया और संगीत में सुनने को लगातार मिलता रहे।

आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर कार्यक्रम चल रहा है मस्त मुंबई दिल का फसाना, और आज आपके साथ है शनिवार की सुबह में आपकी दोस्त माला, और हम जुड़ जाते हैं आपके साथ दिल से दिल तक, और उसी तरह आप भी हमारे साथ जुड़ जाते हैं। और बहुत सारे मैसेजेस आए हैं जो इस बात का जो है प्रमाण है कि आप हमारे साथ सच में दिल से जुड़ जाते हैं। ये जो मैसेज हमारे पास आया है प्रणव शिंदे का, वो ये कह रहे हैं कि भाई जीवन में सफलता कड़ी मेहनत, अटूट हौसले और निरंतर प्रयासों से जो सफलता है वो मिल जाती है। जब तक आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान से नहीं जुड़ जाते, तब तक सफलता की राह जो है वो आसान नहीं होती। तो इसी के साथ उन्होंने ये भी लिखा कि हार नहीं मानूंगा चाहे हालात कैसे हों। ये लाइन जो है जिनकी है वो हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी की, ये लाइन है, मंजिल वही पाऊंगा जहां मेरे सपनों के रंग हों, खुद पर यकीन रख दुनिया खुद झुकेगी, मेहनत तेरी एक दिन कहानी बनेगी, सफलता वही है जहां हौसले जवान होते हैं। तो मुश्किलें भी आसान लगती हैं जब विश्वास हाथ में हो। तो ऐसा ही कुछ किया था डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने, जिनकी वजह से आज हम उजाले जो हैं वो चारों तरफ देख पा रहे हैं। दुनिया की बेहतरीन लैब्स उनके लिए खुली थी, फिर भी उन्होंने अपने देश को चुना और कहा कि यहीं पर रिसर्च होनी चाहिए। परमाणु कार्यक्रम की नींव भी उन्होंने यहीं पर रखी, और वो सिर्फ वैज्ञानिक ही नहीं थे, वो एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम के आर्किटेक्ट थे। उन्होंने 1954 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की भी स्थापना की थी। इनके बारे में आज हमने आपको बताया कार्यक्रम मस्त मुंबई दिल का फसाना में, और भी बातें होंगी लेकिन इस घंटे में दो गाने बैक टू बैक आपके लिए बजाएगी आपकी दोस्त माला, और आपके जो नाम हैं वो ले लेते हैं। विजेंद्र खटोल, रघुनाथ खनुकर कोल्हापुर से अब जुड़ चुके हैं हमारे साथ महाराष्ट्र, और दीपा पालकर को गाने बहुत पसंद आ रहे हैं, वो लुत्फ उठा रही हैं उनका। फिरोज सिगनपुरिया भी जुड़े हुए हैं लगातार। कल्पना राजू उल्लासनगर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, वहीं पंकज महोड़ अमरावती से, वो कह रहे हैं कि दीपा पालकर ने जो मैसेज भेजा वो उन्हें बहुत पसंद आया, तो आपका मैसेज पंकज जी दीपा जी तक पहुँच गया, डेफिनेटली वो सुन रही होंगी। सुधीर मोजारकर हमें सुन रहे हैं, और आप सभी जो सुन रहे हैं लेकिन मैसेजेस नहीं भेज रहे हैं, अगले घंटे में आप हमें मैसेजेस भेज सकते हैं 8657661071 8657661071। इस नंबर पर आप पहुंचाइए एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर, आपकी दोस्त माला जरूर शामिल करेगी आपके मैसेजेस, आपके दिल की बातें। कार्यक्रम होगा नमस्ते भारत, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए, क्योंकि आपके साथ जो हमारी मोहब्बतें हैं वो बिल्कुल शुद्ध हैं, बिल्कुल इस गाने की तरह। बने रहिए एफएम रेनबो पर।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो 107.1 FM पर। वक्त हो चला है ठीक 10:01। आइए आपको इस घंटे की ताजा तरीन खबरों की जानकारी दे दें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। ये विधेयक गुरुवार को संसद द्वारा पारित किया गया। इसका उद्देश्य कठोर दंडों का प्रावधान करने और फास्ट ट्रैक अदालत की स्थापना करके लोक परीक्षाओं में अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। यह विधेयक छात्रों के भविष्य की रक्षा करते हुए एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करके परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा को सुदृढ़ करने का प्रयास करता है। अधिनियम में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति की जब्ती जैसे कठोर दंड शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश जारी कर युवाओं से गाली गलौज और नफरत से दूर रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि गाली देने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। जंतर मंतर की हाल की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ बच्चों ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जो किसी भी सभ्य समाज के लिए उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके और उनकी दिवंगत माता के बारे में जो भी शब्द कहे गए उन्हें वो माफ करते हैं। बचपन में गलतियां हो जाती हैं और उन्हें सुधारने का अवसर भी मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे बच्चों को सजा देने या समाज में अपमानित करने के बजाय उन्हें सही रास्ता दिखाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे इन बच्चों को क्षमा करते हैं और समाज में उन्हें सुधार का अवसर देने की अपील करते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल शाम ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची से फोन पर बात कर पश्चिम एशिया क्षेत्र में जारी तनाव पर चिंता व्यक्त की। डॉक्टर जयशंकर ने किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले नहीं होने देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी पक्ष द्वारा किए गए ऐसे किसी भी हमले की निंदा करता है। विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्हें चल रहे घटनाक्रमों और चर्चाओं के संबंध में ईरान के दृष्टिकोण से भी अवगत कराया गया है। श्री जयशंकर ने कहा कि भारत हमेशा संवाद और कूटनीति का समर्थक है। राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो में भारत ने पहली बार 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। भारत के खाते में अब 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। जूडो में अस्मिता डे और हर्ष सिंह राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय जूडो खिलाड़ी बन गए हैं। यामिनी मौर्य ने रजत पदक जीता। एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा ने पुरुष भाला फेंक में रजत पदक जीता, जबकि यशवीर सिंह ने व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ कांस्य पदक अपने नाम कर लिया। तेजस्विन शंकर ने डेकैथलॉन में कांस्य जीतकर इस स्पर्धा में राष्ट्रमंडल खेलों का पदक जीतने वाले पहले भारतीय बनने का गौरव हासिल किया। इसी के साथ आकाशवाणी के प्रादेशिक समाचार अनुभाग द्वारा प्रसारित समाचार यहीं समाप्त होते हैं।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: तो भाई सुनो सुनो ए दुनिया वालों, हम हर सुबह खबरें पढ़ते हैं या सुनते भी हैं, और कभी डर की, कभी शोर की, कभी शिकायतों की, लेकिन इन दिनों कहानियां भी कुछ ऐसी पैदा हो जाती हैं जो हमें चुप करा देती हैं और भीतर से मजबूत भी बना देती हैं। तो आज आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर नमस्ते भारत में सुनो सुनो ए दुनिया वालों, मैं यानी कि आपकी दोस्त माला आपको ऐसी कहानियां सुनाने जा रही हूं जो सहानुभूति नहीं मांगती, बस याद दिलाती है इंसान की

असली ऊंचाई की, उसके इरादों से वो मापी जाती है। ऐसी कहानियां सुनाएंगे आज आपको कार्यक्रम नमस्ते भारत में। तो करते हैं शुरुआत श्रेया घोषाल और अभिजीत की आवाज में ओम शांति ओम के इस खूबसूरत नगमे से।

भाई वैसे तो मैंने जो है अपनी प्लेलिस्ट बहुत अच्छी सी बनाई है, लेकिन फिर भी आप मुझे बहुत सारे गानों की फरमाइशें भेज रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि कुछ कुछ शामिल की जानी चाहिए। कुछ कुछ गाने बहुत ही अच्छे और खूबसूरत हैं। विजेंद्र घटोल ने मासूम फिल्म के गाने की जो है फरमाइश हम तक पहुँचाई है, तो वो हम ज़रूर पूरी करेंगे। और वहीं प्रणव शिंदे ने कहा है कि 2003 में रिलीज़ हुई थी फिल्म चोरी चोरी, और

23 साल इस फिल्म को पूरे हो गए हैं, तो इसका एक गाना है वो सुनना चाहते हैं। इससे पहले हम अपनी बातों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, मुझे लगता है ये जो दो गाने हैं पहले सुन लेते हैं और फिर उसके बाद बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। वैसे काजल कक्कड़ ने कहा है कि आज जो है स्टूडियो में खूब धूम धड़ाका आपने मचाया है, साथ ही साथ लगता है कि आप जलेबी फाफड़ा खाकर आए हैं। भाई बिल्कुल इतना टाइम नहीं था कि सुबह सुबह जलेबी फाफड़ा खाकर आते। चेंबूर से काजल हमारे साथ जुड़ी हुई है। हाँ लेकिन आपने कह दिया तो हमने खा लिया, ऐसा हम महसूस कर सकते हैं। तो भाई काजल ये दो गाने एंजॉय कीजिए और उम्मीद करते हैं कि भले ही मेरी प्लेलिस्ट के नहीं है, आपकी पसंद के गाने हैं, लेकिन ये गाने आपको पसंद जरूर आएंगे।

आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और ये प्रसारण आप सुन पा रहे हैं आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर भी न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर आप हमें लगातार सुनते रहते हैं 24/7। कार्यक्रम चल रहा है नमस्ते भारत और सुनो सुनो ए दुनिया वालों, और बातें तो करनी ही है लेकिन आपके मैसेजेस भी हम तक पहुंच चुके हैं, माला बनी हुई है लगातार आपके साथ। तो ये जो पहली कहानी है वो हम आपको बताते हैं। मैं एवरेस्ट पर चढ़ने की ट्रेनिंग कर रही हूँ, ये सुनकर जो है लोग हंसने लगे, क्योंकि कहने वाली थी 59 साल की वासंती चेरुवितिल। वासंती चेरुवितिल, उन्होंने कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली थी, बस एक सपना और एक जिद। उन्होंने सोशल मीडिया से ट्रैकिंग सीखी, फिटनेस सीखी, हर सुबह 3 घंटे चलना सीखा, शाम को 5-6 किलोमीटर पैदल भी वो चलती थी। 4 महीने तक बिना शोर के, बिना दिखावे के वो ये सब करती रही। अपने सिलाई के पैसों से उन्होंने इस सफर को फंडिंग देने की भी सोची। जाने से पहले अपने जो सारे ज्वेलरी थी वो अपने बच्चों को कह दी, जैसे वो कह रही हूँ कि अगर मैं ना लौटूं तो तुम ये रख लेना। और हाथ में लिया तिरंगा और 5,364 मीटर की ऊंचाई पर एवरेस्ट बेस कैंप पर चढ़ने के लिए वो चल दी। तो भाई चढ़ भी गई वो, और सुनो सुनो है दुनिया वालों, इसलिए कहते हैं कि उम्र कोई रुकावट नहीं होती, अगर इरादा जो है चलने का हो, आगे बढ़ने का हो, तो उम्र बिल्कुल भी कोई रुकावट नहीं होती। और इस तरह हम भी चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। काजल कक्कड़ ने भी एक गाने की फरमाइश हम तक पहुंचाई है, दीपा पालकर ने भी एक गाने की फरमाइश हम तक पहुंचाई है, तो वो फरमाइशें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक है लोफर फिल्म के गाने की, और दूसरी जो फरमाइश हम तक आई है ये फिल्म का नाम कभी खुशी कभी गम। 10:26 एक गाना, उसके बाद एक ब्रेक, और उसके बाद दूसरा रिक्वेस्ट वाला गाना हम आपके लिए लेकर आएंगे। एंजॉय कीजिए अपनी दोस्त माला के साथ।

तो जीवन में खुशियां और गम तो बने ही रहते हैं। दूसरी कहानी हम आपको सुनाते हैं। ये कहानी है तमिलनाडु के कीलेकुडी गांव से पांचवी क्लास के एक बच्चे सुंदर पांडी की। छत पर खेलते हुए करंट वाले तार ने उसके दोनों हाथ जो है वो छीन लिए और उसके बाद उसकी जिंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं रही। हर दिन एक नई चुनौती, खुद पर भरोसा, लोगों की नजरें और भविष्य का सवाल। लेकिन सुंदर पांडी रुके नहीं, उन्होंने तैराकी चुनी। पानी में उतरते ही उनकी कमजोरी उनकी ताकत बन गई। बस आज उनके नाम है जूनियर नेशनल पैरालंपिक्स के 7 गोल्ड, सीनियर कैटेगरी के 2 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज और 11 राष्ट्रीय पदक, वो भी सीमित संसाधनों के साथ। और आज भी उन्हें संसाधनों की कमी है, लेकिन सपनों की उनके पास कोई कमी नहीं है। तो सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, कुछ लोग हाथ भले ही खो दें पर अपने सपने जो हैं वो कभी नहीं छोड़ते हैं। तो ये जो मैसेज अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ये हमारे पास पंकज महोड़ का आया है। और पंकज महोड़ एक गाने की फरमाइश कर रहे हैं। कोशिश करेंगे पंकज जी कि वो गाना हम आपके लिए प्ले कर पाएं, अदरवाइज़ प्लेलिस्ट तो हमने ऑलरेडी बनाई है। आदर्श कनौजिया ने भी एक गाने की फरमाइश हम तक पहुंचाई है। सुबह लक्ष्मी मस्तकार भी जुड़े हुए हैं, किशोर नायक भी जुड़ गए हैं और उन्होंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का एक मैसेज हम तक पहुँचाया है। सपने वो नहीं हैं जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो आप जाग कर पूरे करते हैं। रघुनाथ खनुकर कोल्हापुर से हमारे साथ जुड़े हुए, फिरोज सिगिनपुरिया और साथ ही साथ

इन्होंने ये भी हमें एक मैसेज किया था कि उनकी बिटिया रिद्धि का आज जन्मदिन है। रघुनाथ खनुकर ने मैसेज किया था, तो रिद्धि आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह हर साल आप अपना जन्मदिन प्यार से मनाती रहे, ऐसी ही हम कामना करते हैं। आज का दिन आपका है। फिरोज सिकनपुरिया भी जुड़े हुए हैं, प्रमोद चिंचोलकर, महेश बोहरा, अजमेर राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं और वो कह रहे हैं कि भाई मशहूर अभिनेत्री मीना कुमारी जी का जन्मदिन है, तो उन्हें ये एक गाना जो है पाकीज़ा फिल्म का डेडिकेट करना चाहते हैं। वहीं प्रणव शिंदे और प्रकाश शिंदे की तरफ से भी ये फरमाइश हमारे पास पहुंची है, क्योंकि आज उनकी जयंती पर वो ये गाना जो है रिक्वेस्ट किया है उन्होंने, तो हम आपको सुनाते हैं ये गाना जिसे हमने लिया है पाकीज़ा फिल्म से। एंजॉय कीजिए हमारे साथ आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो 107.1 FM पर।

तो भाई सुनो सुनो ये दुनिया वालों, जब आप किसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं तो आप सिर्फ डेटा नहीं इंसानियत फैलाते हैं। ये मुस्कानें, ये बदलाव, ये सपने, ये सब आपकी वजह से मुमकिन हो पाते हैं। तो भाई ऐसी कहानियां आप लोगों तक पहुंचाते रहिए और हम भी पूरी कोशिश करते हैं कि आकाशवाणी मुंबई के FM रेडियो 107.1 FM के माध्यम से, जिसका प्रसारण आप सन पा रहे हैं आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 104.5 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर, यूज होने आ रहा पर भी आप पूरी दुनिया में पहुंच पाते हैं ऐप के माध्यम से हम तक और हम आप तक। तो भाई ये कहानियां जो है वो एक दूसरे तक पहुंचाते रहिए, क्योंकि दुनिया को बदलने के लिए सबको हीरो बनना जरूरी नहीं है। कभी कभी कहानी सुनना और उसे आगे बढ़ाना यानी उसे सुनाना भी काफी होता है। मैं हूं माला और आप फिलहाल सुन रहे हैं नमस्ते भारत, सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों। और साथ ही साथ वक्त जो है वो अब मुझे और इजाज़त नहीं देता और बातें करने की आपके साथ, लेकिन आपके मैसेजेस जो है हम ज़रूर शामिल करेंगे। ममता जायसवाल का मैसेज हमारे पर पास पहुंचा है रघुनाथ खनुकर कोल्हापुर से, और ये है भागवती दरवांते, जगह का नाम इन्होंने नहीं लिखा है। और फिर उससे गिनपुरिया के लिए हम आखिरी में जाते जाते गाना जो है वो बजा देंगे। महेश भाटकर सांता क्रूज, दीपा पालकर, प्रमोद चिंचोलकर सुन रहे हैं भारती, और दुर्गेश नागिनपुरे भी हमें सुन रहे हैं, प्रणव शिंदे, प्रकाश शिंदे, काजल कक्कड़, पंकज महोड़, आदर्श कनौजिया, शुभ लक्ष्मी मस्तकार, महेश बहोरा, किशोर नायक, वैदेही जो हैं वो कह रही हैं कि एज वाकई में नंबर ही है। अपने को खुद को अपने दिल से यंग महसूस करना और कुछ भी अचीव कर पाना है तो दिल से खुद को यंग महसूस कीजिए और जिंदगी को पूरे मजे के साथ जिए। अजय साखरे इंदौर से हमें सुन रहे हैं, और रजनीकांत पाटिल वाड़वन से, राम प्रजापति बाबा दादर से, और ये मैसेज हमारे पास पहुंचा है, ये मैसेज है कबीर रेडियो श्रोता संघ का, डोंडी लोहारा से बालोद छत्तीसगढ़ से ये हमारे पास मैसेज आया है। देवशंकर तुमुरिया, अजय देव तुमुरिया, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, राधिका और प्रभा देवी तामुरिया, और उनका जो एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा है मास्टर अल कबीर, ये सभी हमें सुन रहे हैं लगातार।

धनंजय नवी मुंबई से हमें सुन रहे हैं, भागेश्वर पाटिल, कल्पना राजू उल्लासनगर से, श्रीधर मुजारकर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस घंटे में अपनी दोस्त माला के साथ जुड़ने के लिए आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो पर। और चलते चलते ये आखिरी गाना पैडमैन फिल्म से आपके लिए अरिजीत सिंह की आवाज में, और लूंगी इजाजत इस वादे के साथ कि जल्द ही होगी आपसे मुलाकात और एक धमाकेदार एपिसोड के साथ आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो पर। भूलिएगा मत, जुड़ेगी जरूर आपके साथ आपकी दोस्त माला। टाटा बाय बाय।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: 11 बज चुके हैं, आइए एक नजर डालते हैं इस घंटे के प्रमुख समाचारों पर। मंत्रिमंडल ने 2026-2027 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह निर्णय युवा विकास और राष्ट्र निर्माण के लिए खेलों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। श्री वैष्णव ने कहा कि यह योजना जमीनी स्तर से लेकर टारगेट पोडियम ओलंपिक योजना स्तर तक अखिल भारतीय प्रशिक्षण सुविधाएं स्थापित करने में सहायक होंगी। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में हुए तथाकथित चुनाव पाकिस्तानी सत्ता के खिलाफ जनता की कड़ी नाराजगी का प्रमाण है। नई दिल्ली में कल संवाददाताओं को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि POJK में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पाकिस्तान लगातार दमन कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस कार्यवाही में 40 से अधिक लोगों की मौत हुई है और कई अन्य घायल हुए हैं। उन्होंने बताया कि POJK के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से इन घटनाओं की स्वतंत्र जांच की मांग की है। भारत ने भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान की कार्यवाही की जांच करने और उसे जवाबदेह ठहराने का आग्रह किया है। स्पेन के सियूटा एनक्लेव में बढ़ते प्रवासी संकट के मद्देनजर इटली ने स्पेन के साथ अपनी समुद्री और हवाई सीमाएं बंद करने का आदेश दिया है। यह निर्णय इटली के गृह मंत्रालय के नवीनतम खुफिया आकलन की समीक्षा के बाद लिया। इस बीच सियूटा से 48,000 से अधिक प्रवासी मोरक्को लौट चुके हैं, जहां हाल के दिनों में उत्तरी अफ्रीका से लगभग 60,000 लोग पहुंचे थे। स्पेन और मोरक्को ने सियूटा में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले सभी प्रवासियों की शीघ्र वापसी सुनिश्चित करने के लिए उपायों को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की है। बात अब खेल जगत की। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक कर रजत पदक जीता है, जबकि यशवीर सिंह ने कांस्य पदक अपने नाम किया। नीरज ने अपने दूसरे प्रयास में सत्र का सर्वश्रेष्ठ 85.83 मीटर का थ्रो किया। वहीं यशवीर ने अंतिम प्रयास में व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ 85.41 मीटर का प्रदर्शन कर कांस्य पदक हासिल किया। इस पदक के साथ राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के पदकों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। इनमें 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। इस घंटे के समाचार में बस इतना ही।

11:03 हो रहे हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 म्यूजिकली योर्स। मैं हूं आरजे भावना आपके साथ। एंड हेलो लिसनर्स, आप मेरे साथ ट्यून इन कर चुके हैं 107.1 FM रेनबो पर और घड़ी में 11:03 हो रहे हैं, यानी अगले 3 घंटों के लिए दुनिया भर की टेंशन को जरा पॉज कर दो, क्योंकि शुरू हो चला है आपका अपना शो ब्रेक फ्री। ठीक 12 बजे के बाद आप म्यूजिक कैफे सुनेंगे और उसके बाद आपका चहेता रिक्वेस्ट आर हिट एंड हॉट। वेल, ब्रेक फ्री में आज के टॉपिक की बात करें तो बताएंगे, लेकिन इस अगले गाने के बाद। उससे पहले कैलाश खेर की आवाज में ये मंगल पांडे की फिल्म से मंगल गीत, यानी कि मंगल मंगल सॉन्ग।

पतले हो गए सैया। अरे कमा कमा के मर गए सैया, मोटे सैया पतले सैया।

0: हाजत है। जय भैया जय।
1: रघुबीर यादव और भदवाई विलेज मंडली, जी हाँ, ये वो सिंगर्स हैं जिन्होंने ये गाना गाया है। फोक सॉन्ग की हम जब बात करते हैं तो अक्सर हम सिंगर्स को सुनते हैं, लेकिन असल जो गाना है वो ज़मीन से आता है, मिट्टी से आता है, वहाँ के लोगों से आता है, और ये हमारे कल्चर को जो है दिखलाता है। ये गाना पीपली लाइव 2010 की मूवी से है, और इस मूवी में और गानों में भी जो रियल नॉन प्रोफेशनल एक्टर्स हैं उन्हें इस फिल्म में रखा गया ताकि ये फिल्म ऑथेंटिक और डॉक्यूमेंट्री स्टाइल ज़्यादा लगे, यानी असल लगे। एंड इसी चीज़ को लाने के लिए पर्दे पर डायरेक्टर अनुषा रिजवी जो हैं उन्होंने बॉलीवुड के जाने माने सितारों को लेने के बजाय मध्य प्रदेश के भोपाल, उपनगरों और आसपास के इलाकों के असली ग्रामीणों और स्थानीय लोक कलाकारों को सहायक कलाकारों के रूप में लिया। तभी आप अगर इस गाने को ध्यान से सुने या इस मूवी के गानों को तो इनमें वो खुशबू ज़रूर आपको पता चलेगी। कभी आप अगर किसी गांव में ठहरे हों या कहीं जाते हैं तो आपको एक मंडली ज़रूर चबूतरे पर बैठी मिलेगी जो ढोलक और ताशों के साथ में गाने गाती है। चाहे वो कोई भी गांव हो, कोई भी शहर के गांव, कोई भी प्रांत के आप गांव को ले लीजिए, वहाँ पर एक ऐसी मंडली होती है जो आम तौर की रोज़मर्रा की ज़िंदगी के ऊपर, उनके कठिनाइयों के ऊपर गाने ज़रूर बनाएगी। और फोक सॉन्ग्स जो हैं वो जुदाई और पीड़ा या फिर उनकी शिकायतें या फिर शायद किसी ऋतु को बुलाने के लिए ज़रूर होती है, यूजुअली वही होती है, और ये आपको गानों में ज़रूर मिलेगी। वेल विद दैट, ये तो हुई गाने की बात, लेकिन लेट मी ऑल्सो टेल यू कि पिछली बार यानी कि परसों जब मैं आई थी तो जाते जाते मैंने एक छोटी सी जिद की थी आपसे। मैंने कहा था कि ब्रेक फ्री में हम बातें करेंगे, यानी बस बोलिए मत, बातें कीजिए, क्योंकि हम जब सिर्फ बोलते हैं तो शोर होता है, पर जब हम बातें करते हैं तो चुप्पी टूटती है, और उसी टूटी चुप्पी से कई सारी मुस्कुराहट नज़र आती है, कहानियाँ निकल कर आती हैं, लोगों की कहानियाँ, रास्तों की कहानियाँ। और मैंने आपसे आपकी लाइफ का वो एक किस्सा ज़रूर मांगा था जिसने आपका नज़रिया बदला हो, या फिर शायद आपके दादा दादी, नाना नानी या माता पिता ने कोई ऐसी कहानी सुनाई हो जिसने आपकी सोच बदली हो। तो बताइए आज कौन सी कहानी आप शेयर करने वाले हैं। 8657661071 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जल्दी से मुझे हाय भेजिए और अपनी कहानियाँ बताइए। द बेस्ट वंस उन्हें मैं सुनाऊंगी यहाँ ऑन एयर।

11:25 ऑन द क्लॉक, 11:25 हो रहे हैं. आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 म्यूजिकल इयर्स विथ मी आरजे भावना, जहां ब्रेक फ्री पर हम आज ब्रेक फ्री तो कुछ नहीं कर रहे, पर हाँ हम बात कर रहे हैं कहानियों की. कहानियां जो आपने सुनी किसी और से, पर आपने वो कहानियां अपनी जिंदगी की सार बना ली, या फिर आपने किसी को वो कहानी सुनाई जिससे उनकी ज़िंदगी या उनके सोच में बदलाव आ गया. वेल, मैसेजेस तो आ नहीं रहे, एक दो मैसेजेस आए हैं. आई एम वेटिंग कि आप लोगों के मैसेजेस कब तक आएंगे, बट डोंट वरी, आई नो कि आप लोग में से ज़्यादातर लोग शायद व्हाट्सएप प्रिफर ना करते हों, तो आपके लिए चलिए मैं नंबर दे देती हूँ. आप हमें कॉल भी कर सकते हैं. जी हाँ, 022 ये पहले लगाइएगा कोड, उसके बाद 4515 4132, ये हमारा लैंडलाइन नंबर है. कॉल कीजिए और बताइए कि आपको क्या याद है कोई भी वो कहानी जो आपके दादा दादी या नाना नानी बुजुर्गों ने या आपके किसी दोस्त ने सुनाई हो जिसने आपकी सोच बदली हो. तो क्यों ना उस कहानी को मेरी जबानी, आपकी कहानी सुनाया जाए रेडियो पर, ताकि शायद वो कहानी किसी और की ज़िंदगी बदल दे. वेल, आपके मैसेजेस पर आऊँगी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा उधार जो है वो भी मैं चुकाऊँगी, यानी कि मेरी कहानियाँ जिसने मुझे ये सोचा कि चलिए कहानियों की शुरुआत करते हैं. क्योंकि कहीं ना कहीं हमने इस दौड़ती भागती ज़िंदगी में ठहरना और कहानी सुनना ये पीछे छोड़ दिया है, बिजी जो रहते हैं आजकल हम. वेल, कहानी मेरे नाना जी ने बताई थी, और ये जो मोमेंट था ये मैं शेयर करूंगी आपसे इस अगले गाने के बाद.

0: नगर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

11:54 ऑन द क्लॉक, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 विद मी आरजे भावना, जहां मैं आज आपकी कहानी मेरी जुबानी सुनाने वाली हूँ। वेल, कहानियां तो आ रही है हमारे पास और सारी कहानियों का एक ही सार मिलके आ रहा है कि ये कहानियां आपकी यादें हैं, आपकी धरोहर है, ये वो पूंजी है, ये वो शिक्षा है जो आपको सबसे पहले मिलती है। हम अक्सर सोचते हैं कि एजुकेशन या शिक्षा जो आपके गुरु होते हैं वो पहले स्कूल में नहीं होते, आपके सबसे पहले गुरु आपके घर में आपके परिवार के लोग या सदस्य होते हैं, माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, जिनसे हम धरोहर पाते हैं, जीवन को कैसे जीना है ये सीख पाते हैं। और ये शायद आपको बाहर पता चले, लेकिन सबसे पहले जो नींव रखी जाती है वो घर पर रखी जाती है। और वैसे ही एक कहानी हमारे पास आई है, हमसे फोन पर बात किया है ओमकार काटकर जी ने पंढरपुर से। वो कहते हैं कि उनके भाई, बड़े भैया जो हैं ज्योतिराव काटकर, वो अक्सर ये सोचते थे कि उनके छोटे भाई पढ़े लिखे, अपने पैरों पर खड़े हों और स्वावलंबी जीवन जिए। और ये कुछ हालत और कारण के चलते इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ी और इन्होंने अपना एक छोटा सा एक काम शुरू किया। और एक चीज़ जो इन्हें अब तक उनके भाई की याद है कि आप जो काम करते हो वो काम आपको जीवन का सार सिखाता है।

और एक ही शब्द में उन्होंने बहुत ही बड़ी बात कही है, जो कि मैं भी मानती हूँ कि आप जो भी काम करते हैं वो व्यर्थ नहीं जाता। आपके जीवन का हर एक काम आपको जीवन का एक नया सार सिखाता है, कोई सीख जरूर दे जाता है और वो कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसका मतलब ये है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई भी काम प्रॉफिट या लॉस के बेस पर नहीं होता, काम काम होता है। और कोई भी काम अगर आप स्वाभिमान के साथ करें तो वो काम हमेशा हमेशा आपको फल जरूर देता है। वेल, ये चीज़ जो है ये आपकी धरोहर है एंड बहुत ही बढ़िया बात कही है। और ये चीज़ ओमकार जी, आप काफ़ी लकी हैं कि आपको एक ऐसा भाई मिला है जो आपको आपके जीवन की सीख बता रहा है। वेल, आई नो, आई एम श्योर कि आप सभी के जीवन में कोई ना कोई ऐसा इंसान ज़रूर आया होगा जिसने आपको एक ट्रैजेक्टरी दी होगी, यानी कि एक दिशा दिखाई होगी जो शायद आपको पता भी ना हो, लेकिन उनकी आवाज़, उनके वो शब्द अभी भी आपके दिमाग में गूंजते रहते हैं और कभी भी आप अगर मुश्किल में होते हैं तो वो आवाज़ तुरंत आती है आपके सामने, आपके जहन में याद दिलाते हुए कि भटको मत, रास्ता तुम्हारे सामने है, बस उस पर चलने की हिम्मत करो। मेरे जहन में तो ऐसे बहुत सारे शब्द गूंज रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप पहली बार अपने उस आवाज़ को टटोलिए, अपने अंदर जो है आवाज़ें चलती उसे टटोलिए और बताइए कि कौन सी वो आवाज़ चीख चीख कर आपको हमेशा आपके तकलीफ़ों में रास्ता दिखाती है, आपकी कहानी। वेल, इसी के साथ चलिए एक छोटा सा गाना आप लोगों के लिए।

0: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: बारह बज चुके हैं, आइए एक नजर डालते हैं आकाशवाणी मुंबई द्वारा प्रस्तुत अब तक के प्रमुख समाचारों पर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नीरज चोपड़ा, यशवीर सिंह, तेजस्विन शंकर और यामिनी मौर्य को ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने पर बधाई दी है। नीरज ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में रजत और यशवीर ने कांस्य पदक जीता है। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर इस उपलब्धि को भारत के लिए शानदार दोहरी पोडियम जीत बताया। विदेश मंत्रालय ने आर्थिक संबंध सचिव सुधाकर दलेला ने बेनिन गणराज्य के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री दलेला ने भारत और बेनिन के बीच मजबूत संबंध स्थापित करने की प्रतिबद्धता दोहराई। आज स्वतंत्र

स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि और समाज सुधारक लोक शाहिर अन्ना भाऊ साठे की जयंती है। इस अवसर पर आज महाराष्ट्र में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज पुणे में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल को लोकमान्य तिलक स्मृति पुरस्कार प्रदान करेंगे। उत्तरी जापान में आज आओमोरी प्रांत के पास 5.8 तीव्रता का भूकंप आया। जापान के मौसम विभाग ने बताया कि भूकंप 80 किलोमीटर की गहराई पर आया। हालांकि भूकंप के बाद सुनामी आने की आशंका नहीं है। यह भूकंप मंगलवार को कुमामोटो प्रांत में आए एक शक्तिशाली भूकंप के बाद आया है। ये थे अब तक के प्रमुख समाचार।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज। मैं हूं आरजे भावना आपके साथ। 12:02 हो रहे हैं और हमारा प्रोग्राम म्यूजिक कैफे शुरू हो चला है, यानी कि दूसरा पड़ाव, और ठीक 2 बजे तक आपका मेरा साथ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप अभी अभी ट्यून इन कर रहे हैं इस चैनल पर, तो इससे पहले हम बात कर रहे थे कहानियों की, आपकी कहानियाँ। अब मेरे पास कहानियाँ तो बहुत आ रही हैं, लेकिन मुझे वो कहानियाँ चाहिए जो आपके जहन में बसी हों। वो किताबों वाली कहानी नहीं, आपकी अपनी ज़िंदगी की कहानी, जो आपने सीखी या आपने सुनी हो किसी से, जिसने आपके ज़िंदगी का रुख बदला हो, आपकी सोच बदली हो, वो कहानी। शायद शब्दों में आप ना बता पाए, लेकिन हाँ, जज्बात में ज़रूर समझ जाऊंगी, क्योंकि कहानी आपकी होगी, ज़बानी मेरी। तो बताइए आपकी कहानी क्या है, मैसेज कीजिए 8657661071 पर। और कई बार ऐसा होता है कि बात करने में जो मज़ा है वो टाइप करने में कहा। तो अगर आपको मुझसे बात करनी है, आपकी कहानी बतानी है स्पेशली, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 4515-4132। ये हमारा स्टूडियो लैंडलाइन नंबर है, इससे पहले 022 डायल करना मत भूलिएगा। एंड विद दैट, आपकी कहानियाँ जब तक मैं पढ़ रही हूँ, आई एम सिलेक्टिंग द बेस्ट वन आउट ऑफ इट, तब तक आप ये अगला गाना सुनिए अदनान सामी की आवाज़ में।

12:12, 8 on the clock और हमारे साथ कई लोग जुड़े हुए हैं. फिरोज फैमिली एंड फ्रेंड्स, अंजू अंधेरी ईस्ट से, डॉक्टर अंजू, संजय दर्शन हमारे साथ जुड़े हैं, फिरोज सिगनपोरिया, अजय साखरे इंदौर से, अशोक पाटिल वराली से, प्रणव शिंदे ओमकार काटकर पंडरपुर से, बाबा दादर से, शुभ लक्ष्मी मस्तकर जी हमारे साथ हैं, राकेश माथुर पूना से, सुरेश काशीनाथ पाटिल और अविनाश दामोदर कड़ू वाडवन से, वैश्वी और ज्योति अविनाश करू. इनफैक्ट वी ऑल्सो हैव प्रमोद चिंचोलकर जी, श्रेया राउत, मिलेश गजानन राउत वाडवन, नितिन स्वामी एरोली से, महेश बोहारा अजमेर राजस्थान, रजनीकांत पाटिल वाधवन से, राम प्रजापति, पंकज माहौर, विजेंद्र घाटोल अकोला, सुशेन निहारकर एंड दीपा पालकर. वेल, आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन मैं जानती हूँ सिर्फ इतने ही लोग नहीं हैं, हमें अलग अलग जगह से काफ़ी लोग सुन रहे हैं और काम करते करते सुन रहे हैं. तो क्या आपको लगता है कि आपके जहन में अगर कोई कहानी ऐसे याद आई है इन कुछ कहानियों को सुनकर, तो आप शेयर करना चाहते हैं? क्योंकि मेरी लैंडलाइन अभी भी इंतज़ार कर रही है आपके कॉल का. मैसेजेस तो देख ही रही हूँ, लेकिन हाँ, आवाज़ सुनना चाहती हूँ, क्योंकि जो इमोशंस आपकी आवाज़ से मुझे पता चलेंगे शायद वो आपके टेक्स्ट में ना आए. यस, आई कैन फील इट, बिकॉज मैंने जब ओमकार जी से बात की तो मुझे पता है उन्हें कितना गर्व हो रहा होगा, कितना प्राउड फील कर रहे होंगे उनके भाई के ऊपर वो, कि उनके भाई ने उन्हें कितनी बड़ी सीख दी है. ग्रैटिट्यूड एट द सेम टाइम, उन्हें बहुत सुकून मिल रहा होगा कि उनके पास एक बड़ा भाई है जो उन्हें मार्गदर्शन देता है. आई नो आप लोगों के अंदर भी बहुत सारे ऐसे इमोशंस हैं, मैं बस वही जगाना चाहती हूँ. सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून है वैसे तो, पर गुड मॉर्निंग. आप लोग सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 विथ मी आरजे भावना. और अगर कहानियों की बात चल ही रही है तो चलिए एक और कहानी आपको सुनाती हूँ. ये कहानी हमारे साथ शेयर की है, वेल कौन सी कहानी चुनने वाली हूँ मैं आज, हमारे पास आई है शुभ लक्ष्मी मस्तकर जी की कहानी. वो कहती है कि जब वो छोटी थी, उनकी जबानी जो है वो ये है, जब मैं छोटी थी तब मेरी नानी ने एक कहानी बताई थी. वो कहानी यही थी कि अपने पास कोई खाने की चीज़ हो तो हमें उसे दूसरों को शेयर करना चाहिए, क्योंकि सात भाइयों ने एक तिल बांटकर खाया था. शेयरिंग इज केयरिंग, दैट्स राइट. हम अक्सर कोई भी चीज़ है, सेल्फ लव तो कहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम सेल्फिश भी बन जाते हैं. वैसे सेल्फिश होना गलत नहीं है, लेकिन अगर आप बांटते हैं तो बांटने से प्यार और

सकता है। सो ये सीख जो है ये हम सब ने सुनी होगी, शेयरिंग इज केयरिंग, बट लेट मी आस्क यू, क्या आप ये चीज अभी भी फॉलो करते हैं? क्या कभी आपने राह चलते चलते ऐसे आपको कोई चीज बेहद पसंद आई हो तो आपने सोचा चलो ये शेयर कर देते हैं? यकीन मानिए मैंने की है, जबकि मैं बहुत बहुत ज्यादा चाव से चीजें खाती हूँ और मुझे खाना बांटना पसंद नहीं है, लेकिन मैं अकेले खा भी नहीं सकती और ये वो इंसान कह रहा है जो बिल्कुल खाने में कंजूसी बिल्कुल नहीं करता। वेल, आपकी क्या स्टोरी है आप भी मुझे बताइए। टिल देन ये अगला गाना सुनिए, जेम्स की आवाज में फ्रॉम द फिल्म गैंगस्टर।

यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

बातें तो बहुत करनी है आपसे और आपकी बातें सुननी भी है, लेकिन उससे पहले लेट मी ऑल्सो टेल यू, सुषेण निहारकर हमारे साथ हैं, राजेश बलावी कोटी गांव जिला बालाघाट खेत में काम करते करते हमें सुन रहे हैं। अभी अभी हमें विजेंद्र खाटोल जी का भी कॉल आया, वो भी अभी इस वक्त लंच पर बैठे हैं। और वी ऑल्सो हैव पीपल लिसनिंग अस फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश से हमारा प्रोग्राम अपने फैमिली के साथ सुषेण निहारकर और अश्विनी निहारकर सुन रहे हैं, रूपा बोमदिला डिस्ट्रिक्ट वेस्ट कामेंग से, नितिन स्वामी एरोली से। वेल वी ऑल्सो हैव अनदर स्टोरी कमिंग अप, लेकिन इससे पहले आप बताइए आप क्या कर रहे हैं इस वक्त। Clock, मैं हूं आरजे भावना आपके साथ ब्रेक फ्री प्रोग्राम में। जैसे मैंने कहा आपकी कहानियां मेरी जबानी होंगी, वैसे ही म्यूजिक कैफे में वी आर कंटिन्यूइंग द सेम स्टोरी, आपकी कहानियां जो आपने या आपकी जिंदगी के रास्तों को या सोच को बदला हो या फिर आपको एक नया इंसान बनाया हो, वो कहानियां मैं सुनना चाहती हूं और लोगों तक बांटना चाहती हूं। वेल ऐसी एक कहानी नितिन स्वामी एरोली से हमें मैसेज किया है उन्होंने कि उन्हीं की जबानी ये है कि भावना जी मेरे पास कहानी तो नहीं, हाँ लेकिन दादी ने कहा है ज़रूर हर बार कि बेटा अपना धर्म संभालना, धर्म वो यानी कि सच्चे रहने का धर्म, ईमानदार रहने का धर्म जो सबसे ऊपर है, कभी भी चोरी मत करना, रात को दही मत खाना। बस दादी तो नहीं रही लेकिन उनकी बातें जितनी हो सके संभाल कर रखी हैं, फॉलो करते हैं, यही तो है बातें। इसीलिए तो कहते हैं कि ये धरोहर है, ये वो चीज़ है जो आपके साथ हमेशा रहती है, उनकी बातें उनकी यादें, और ये वो सीख है जो हमें एक अच्छा इंसान बनने की तरफ लेकर जाती है। मॉरल जो कहते हैं, एक मोरल एथिक्स, एक अच्छा इंसान बनने के गुण क्या होते हैं जो आपको ये सिखाते हैं, वो आपके अपने होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ें लेकिन सच्चाई और अच्छाई के साथ। वेल आई एम श्योर आप सभी के पास आपकी अपनी कहानी होगी। मैंने आपसे अपनी कहानी पूछी थी, आई नो आप लोग मुझे कई ऐसी स्टोरीज बता रहे हैं जो कहीं शायद बुक में या प्रिंट की गई होगी, पर कहानी सिर्फ वही नहीं जहाँ पर आप एक लड़का है एक लड़की है, एक राजा थी एक रानी था, रानी थी एक राजा था, एक दूर गांव में कहीं दूर पेड़ पर एक बैठी पंछी चिड़िया कुछ कह रही थी। कहानियाँ अक्सर हमारी ज़िंदगी से ही जुड़ी हुई होती है और उनसे ही निकल कर शायद कई बार फिल्मी पर्दों पर आती है, लेकिन सार सबका एक ही होता है। कहानियाँ तो बस जरिया है, मतलब तो बस एक ही है कि आपको कुछ सीखना या सिखाना है, और चाहे कहानी आपके पास हो या ना हो, लेकिन आपने जो सीख आपकी धरोहर आपके पास आई है आपके बुजुर्गों से, ये आपकी पूंजी है, इसे संभालिएगा और जितना हो सके बांटिएगा आगे की पीढ़ी पर। यकीन मानिए आपको गर्व होगा और खुशी भी। वेल विद दैट अगला गाना सोन निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ में, आओ सुनाओ प्यार की कहानी। मैं कहानी नहीं सुना रही, ये गाने का नाम है। वेल कीप लिसनिंग एफएम रेनबो 107.1 बिकॉज वी आर म्यूजिकली योर्स।

वेल, कहानियां सिर्फ शब्दों में नहीं होती, कुछ कहानियां दोनों में लिपटी होती है। कोई एक ऐसा गाना होता है ना, जिसे सुनते ही आप सीधे 5 साल 10 साल पीछे चले जाते हैं। किसी पुराने दोस्त का चेहरा याद आ जाता है, या वो अधूरी छोड़ दी गई डायरी याद आ जाती है। आज इस कैफे के मेन्यू में हमारे पास कोई आम गाने नहीं, आज हम सुनेंगे वो नगमे जो खुद में एक पूरी दास्तां समेटे हुए हैं, जो हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी चाहे कितनी भी मसरूफ हो जाए, दिल का एक कोना हमेशा उस पुरानी जादुई कहानी के लिए धड़कता रहता है। तो अपनी पसंदीदा कॉफी या चाय की चुस्की लीजिए, अगर गाड़ी चला रहे हैं तो शीशा थोड़ा नीचे कीजिए और इस अगले गाने को महसूस कीजिए। म्यूजिक कैफे के इस दोपहर की पहली जो खास गीत है आपके लिए, लेकिन उससे पहले लेट मी ऑल्सो टेल यू, हिट एंड हॉट प्रोग्राम आप सुनने वाले हैं कुछ ही देर में। और आज का जो थीम है वो मैं आपको बताने वाली हूँ लगभग 10-15 मिनट पहले, तो सुनते रहिए, बने रहिए, क्योंकि थीम आपको पता होगी तभी आपकी रिक्वेस्ट आएंगे। मुझे बहुत सारे लोग चीटिंग करते हैं यहाँ पर, मुझे सिंघम का डायलॉग याद आ गया, चीटिंग करता है। तो आपको अभी मैसेजेस नहीं भेजने हैं, आपको भेजने हैं मैसेजेस जब मैं थीम बताऊंगी तब। सो ये थी मेरी गुगली। वेल विद दैट, आप सुनिए अगला गाना, एंजॉय कीजिए दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग केके की आवाज में फ्रॉम द फिल्म गाइड।

म्यूजिक कैफे की यही खासियत है, यहाँ सिर्फ गाने नहीं बजते, यहाँ पुरानी बातें मुस्कुराती हैं और थके हुए दिलों को सुकून मिलता है। चलिए कुछ और बातें आपसे शेयर करती हूँ। 12:45 ऑन द क्लॉक आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 विथ मी आरजे भावना, जहाँ म्यूजिक कैफे पर हम बात कर रहे हैं कहानियों की। वो कहानियाँ जिन्होंने आपका नज़रिया बदला हो, वो बातें जो आपके दिल पर आपके दिमाग पर बस चुकी हैं, वो जो आपकी विरासत है, आपकी पूंजी है, जो आपने अपने दादा दादी या अपने किसी बुजुर्ग से सीखी है, उनके जीवन से आपने अपने जीवन में उतारी है। वैसे ही एक कहानी आई है महेश बोहारा जी की, अजमेर राजस्थान से। वो कहते हैं, मेरे माता पिता दादा दादी ने हमेशा यही सीख दी है कि कभी भी

कहीं भी रहो सबसे मधुर व्यवहार रखो, अपनी साख बनाए रखो, जितना हो सके अपने आप को मजबूत बनाए रखो और औरों को भी मजबूत बनाने की कोशिश करते रहो। उनकी इसी सीख का नतीजा है कि हर नए दिन मैं अपनी जिंदगी को बदला हुआ महसूस करता हूँ। वेल, ये यही तो सीख है, यही तो पूंजी है जीवन की, जो हम कहते हैं कि अक्सर हमें इसे आए गए नई पीढ़ी पर देते रहनी चाहिए। और यहीं पर प्रकाश जी का भी एक बड़ा ही प्यारा मैसेज आया है। ये इनकी जबानी, इनकी कहानी मेरी जबानी, चलिए ये कुछ लेट 80s की कहानी है। मैं नानी के घर था, पिताजी ने कहा कि इसको यहीं से स्कूल भेजते हैं। मैं सुबह घर से स्कूल के लिए स्कूल बैग लेकर जाता था, लेकिन स्कूल जाने के बजाय गांव के एक ब्रिज के नीचे जाकर आराम से सो जाता था, फिर शाम 5 बजे घर जाता था। स्कूल में पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था। ये कुछ 4 महीने तक चला। जब ये बात स्कूल से घर तक पहुंची तब तो मेरे होश ही उड़ गए। इसके बाद नानी और पिताजी ने कहा कि अगर जीवन में अच्छा इंसान बनना है, जीवन में कुछ हासिल करना है, तो पढ़ाई बेहद ज़रूरी है। फिर क्या, एक मेरे जीवन में ऐसा ही एक चमत्कार हुआ। कक्षा 1 से लेकर BA तक पहला नंबर नहीं छोड़ा, अच्छी पढ़ाई की और अब मुंबई में अच्छा खासा जॉब कर रहा हूँ। पढ़ाई से जीवन में बहुत अच्छा बदलाव आया है। वेल, ये थी प्रकाश शिंदे जी की कहानी। और आपकी भी अगर ऐसी कोई कहानी है जिसने आपकी ज़िंदगी बदली हो या वो आपके लाइफ का मोटो बन चुका हो तो ज़रूर बताइए। वैसे मुझे याद आ रहा है ऐसी कहानी जो मुझे मेरे गुरु ने मेरे 12th के क्लास में बताई थी। उन्होंने, वो मैथ्स के प्रोफेसर थे, और उन्होंने एक चीज़ कही थी मैथ्स से हटकर, डू व्हाट यू लव, लव व्हाट यू डू। वो करो जिसमें मन हो, और जिसमें मन हो वही चीज़ करो। ये चीज़ अब तक मेरे जहन में हमेशा रही है, और यकीन मानिए कोई भी ऐसा दिन नहीं है जहां मैं कोई भी रिग्रेट रखती हूँ या फिर मैं खुश नहीं रहती। खुशी का राज यही है कि आप हमेशा वही चीज़ चुनें जिसमें आपको मन लगे, जिसमें आपकी खुशी हो। कई बार हमें सीख अपने ज़िंदगी में या रास्ते वो लोगों से भी, उन लोगों से भी मिलते हैं जो शायद कोई आपके परिवार से ना हो, राह चलते इंसान से भी आप सीख लेते। वैसी एक और कहानी आई है, बताऊंगी लेकिन इस अगले गाने के बाद।

12:53 ऑन द क्लॉक और हमारे पास एक आखिरी कहानी आपको सुनाती हूँ आज की। रितेश ने ये कहानी भेजी है। वो कहते हैं कि 2 साल पहले मेरा एक बहुत बड़ा बिजनेस लॉस हुआ था और बहुत परेशान थे वो। तो एक दिन पार्क में एक छोटे बच्चे को देखा उन्होंने जो मिट्टी के घरौंदे बना रहा था। एक कुत्ता आया और उसका पूरा घर तोड़कर चला गया। मैं डर गया कि बच्चा रोएगा शायद, पर वो बच्चा धूल झाड़कर बोल रहा था कि कोई बात नहीं, अब की बार और बड़ा महल बनाऊंगा। उस 7 साल के बच्चे ने मुझे सिखा दिया कि गिरना एंड नहीं है, फिर से शुरुआत करने का बहाना है। वेल, थैंक यू सो मच आप सभी ने अपने इतने खूबसूरत बातें, कहानियां हम सभी तक पहुंचाई। एंड विद दैट मैं आप सभी को बता दूं कि म्यूजिक कैफे की कॉफ़ी शायद आपकी ख़त्म हो गई हो, पर हमारे सुरों का यह काउंटर बंद नहीं होने वाला और ना ही आपकी कहानियों का सिलसिला, क्योंकि ठीक दोपहर 1 बजे आप सुनेंगे दोपहर सी बातमियाँ और उसके बाद हिट एंड हॉट रिक्वेस्ट आर। और ये जो तूफान आने वाला है, यानी कि व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस के रिक्वेस्ट आने वाले, लेट मी टेल यू कि मैसेजेस के रिक्वेस्ट सबके तो पूरे नहीं हो पाते, लेकिन कोशिश ज़रूर होती है कि आप सबकी रिक्वेस्ट हो सके पूरी। That's right, hit and hot request आर। अगले 1 घंटे के लिए मेरी इस कंसोल की चाबियां पूरी तरह से आपके हाथों में होंगी, आपकी फरमाइश, आपकी गपशप और सीधे आपके कॉल्स। With that, आपको सुनाऊंगी अगला गाना और उससे पहले थीम अगर मैं बताऊं तो थीम ये है, हंगामा मूवी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन उसी के साथ आपको मुझे वो गाने बताने हैं जिनकी यादें हैं आपके पास, जो गाने आपको याद दिलाते हैं अपनों की या आपके ज़िंदगी में चल रहे हालातों की, वो गाने जो आपके दिल के बेहद करीब हैं, जो आपकी मेमोरी को रीओपन करते हैं। सोचिए, याद कीजिए वो गाने जो शायद आपकी यादों को और तरोताज़ा करते हैं। फिर से उन्हीं गलियारों में चलते हैं।

बाबू सुप्रियो की आवाज में ये गाना आपने सुना फ्रॉम द फिल्म हंगामा 2003। आज ही के दिन ये फिल्म हुई रिलीज और इस फिल्म को हुए हैं पूरे 23 साल। सो ये गाना उन सभी परियों के लिए और राजकुमारों के लिए जो अपने माँ बाप के चहीते हैं, दादा दादी के लाडले हैं। एंड ऑफ कोर्स अब क्या है कि आप लोग तो स्वागत आपके मैसेजेस से कर ही रहे हैं, तो मैंने सोचा खुद के स्वागत के लिए ये गाना प्ले खुद ही कर देते हैं। वेल विद दैट आपको बता दूं, हंगामा मूवी के एनिवर्सरी 23 साल हो चुके हैं उसी फिल्म का। ये बेहतरीन गाना इस फिल्म में मेन कैरेक्टर्स रिमी सेन, अंजलि का किरदार निभाते हुए अक्षय खन्ना, आफ्ताब शिवदसानी, परेश रावल विथ शोमा आनंद, अंजलि और राधेश्याम की जोड़ी। और इस अंजलि की कन्फ्यूजन में ये पूरी पिक्चर में हंगामा हो जाता है, क्योंकि अंजलि नाम से दोनों एक्ट्रेसेस रिमी सेन एंड शोमा आनंद इस फिल्म को एक कॉमेडिक ह्यूमर लेकर आ जाती हैं। विथ दैट इस फिल्म में सिर्फ यही नहीं और भी जेम्स हैं। राजपाल यादव, टीकू तलसानिया, शक्ति कपूर, संजय नार्वेकर, नीना कुलकर्णी एंड वी ऑल्सो हैव मनोज जोशी, उपासना सिंह, रजा खान। विथ ऑल दीज पीपल, ये जो कलाकार हैं ये सब अगर एक फिल्म में आ जाएं और इसे लाने का काम प्रियदर्शन जो डायरेक्टर हैं इस मूवी के उन्होंने किया है, तो ऑफ कोर्स इस फिल्म में हंगामा तो ज़रूर होना है। इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड दिस फिल्म, आई थिंक यू शुड। बहुत ही मज़ेदार फिल्म है। इस फिल्म की सेलिब्रेट करते हुए एनिवर्सरी हमने ये गाना सुना, लेकिन हमारे पास यानी मेरे पास

बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं जहां पर आप लोगों को थीम शायद समझ में नहीं आई है, तो लेट मी टेल यू अगेन. चलिए एक मैसेज आपको पढ़ाती हूँ जो प्रणीत हमें नागपुर से सुन रहे हैं. उन्होंने एक मैसेज दिया है, उन्हें समझ चुका है ये थीम क्या है. एंड दैट इज एक गाना है जो मैं और मेरी सहेली सुनते थे और ये गाना सुन के उसके साथ बिताए सारे पल याद आते हैं. एंड दैट इज द नेक्स्ट सॉन्ग जो आप सुनने वाले हैं. ये हमें नागपुर से सुन रहे हैं और इन्होंने एक्चुअली सभी श्रोता को नमस्ते, आप सभी को नमस्ते कहा है. टू ऑल द लिसनर्स वेल ब्रिंगिंग इन स्ट्रॉन्ग. हमारी जो एफएम रेनबो की कम्युनिटी है, म्यूजिक की कम्युनिटी है, इसे और बड़ा करते हुए वेलकम एवरीवन. आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 107.1. वी आर म्यूजिकली योर्स विथ मी आरजे भावना. और अगला गाना प्रणीत के रिक्वेस्ट, तो आप भी बताइए कि आपके कौन से वो यादें हैं जो आप एक गाने के जरिए वापस जी लेते हैं. वो आपके दिल के करीब कोई ऐसा गाना जो आपकी आंखों में नमी लाता है या चेहरे पर मुस्कान लेकर आता है, लेकिन कोई ना कोई जज्बात जरूर जगाता है.

0: 118 ऑन द क्लॉक और आप सभी के मैसेजेस आ रहे हैं मुझे, लेकिन आप लोग जो गाने भेज रहे हैं मुझे चाहिए कहानी आज. आज तो मैं भी जिद कर रही हूँ, जैसे आप जिद करते हैं कि मैडम मेरा गाना, वैसे ही कहानियाँ. वेल, मुझे बताइए कि कौन से वो गीत हैं जो आपको यादें दिलाते हैं. वेल, यादों से याद आया कि आज कौन सी तारीख है जनाब? आज है अगस्त की पहली तारीख. तो इस पहली तारीख में ये गाना तो बनता है.
1: दिन है सुहाना, आज पहली तारीख है. दिन है

काबू। ओ पैसा जरा लाना, ओ पैसा जरा लाना, लाना लाना, ओ पैसा जरा लाना, आज पहली तारीख है, खुश है जमा।

0: आगा है भगवान है, किशोर कुमार है, निम्मी गीता बाली है, अशोक कुमार है, नरगिस राज कपूर है, दिलीप कुमार है। गीतों का तूफान है, नाच की बहार है, नाच की बहार है।
1: पांच आने का दसाना, पांच आने का दसाना, पांच आने का दसाना,
0: अरे वापस नहीं जाना, जाना जाना, वापस नहीं जाना।

124 ऑन द क्लॉक, 1:24, और आप सभी के मैसेजेस आ रहे हैं, पर यहाँ पर थोड़ी कंफ्यूजन है. लगता है आप लोगों को थीम वापस से बतानी पड़ेगी. कोई बात नहीं, आई एम हियर फॉर दैट. तो इस रिक्वेस्ट आर की थीम को आज हमने थोड़ा दिलचस्प बनाया है, क्योंकि हम दादा दादी की अनकही कहानियों की बात कर रहे थे, यादों की बात कर रहे थे, और आई एम श्योर आप सभी को इस वक्त वो बचपन के दिन ज़रूर याद आए होंगे. तो उस वक्त, या फिर आपके कॉलेज डेज में, या फिर काम के वक्त, कोई ऐसा गाना जो आप सुनते हो तो आपके सारे टेंशन दूर हट जाते हैं, या फिर आप जब कभी उदास होते हो तो वो गाना आपको सुकून देता है. वैसे गाने जिनके पीछे की कहानी है, वो गाने जो आपको आपकी यादें ताज़ा कराते हैं, जिसे सुनते ही आपको अपने घर के आंगन, बचपन की छुट्टियां या अपनों की सबसे ज्यादा याद आती है. और क्यों ये कहानियां? क्योंकि हर गाना कुछ कहता है. तो आप जब वो गीत मुझे देते हैं, वो गीत आपसे क्या कहता है वो बताइए मुझे. आज सिर्फ गीत नहीं सुनना चाहते, गीतों के शब्द जो हैं वो क्या आपसे कहते हैं वो भी हम सुनना चाहते हैं. सो उठाइए अपना फोन, घुमाइए नंबर, और अपनी फरमाइश के साथ मुझे बताइए कि आखिर कौन सा वो गीत है जो आपसे कुछ कहता है. वेल, मैसेज कीजिए 8657661071 पर, या फिर कॉल कर सकते हैं 4515-4132. उससे पहले 022 मत भूलिएगा लगाना. विद दैट, हमारे पास एक और बड़ा ही प्यारा मैसेज आया है. नितिन स्वामी एरोली से हमें भेजते हैं कि मेरा गांव बारशी, सोलापुर जिला महाराष्ट्र है. वहाँ मीटर गेज रेलवे चलती थी और एक हिल स्टेशन था, एक तीर्थ हिल स्टेशन था. हमारा ज़िला दक्खन है, ज़्यादा पहाड़ नहीं, इसलिए हम सावन में पूरा महीना वो छुट्टी छोटी ट्रेन से जाते थे. हर सावन सोमवार को लोग ज़्यादा जाते थे, तो सभी दोस्त मिलकर गए थे. आस्था थी लेकिन पिकनिक जैसे जाते, इंजॉय करते करते जाते. तो हमने टेप रिकॉर्डर ले लिया, और उस टाइम जितेंद्र जी की फिल्म का गीत पॉपुलर हो गया. वो गीत जब भी सुनता हूँ सभी दोस्त याद आते हैं, जो अब अलग हो गए, बिखरे लेकिन कनेक्टेड हैं. वेल, आई एम

सो सॉरी, ये गाना तो हमारे पास नहीं है, लेकिन नितिन जी आपके लिए, चलिए बिकॉज आपने अपनी इतनी प्यार भरी स्टोरी शेयर की है, आपके पास एक फ्री पास है कि आप हमें कोई भी गाने की रिक्वेस्ट अगर भेजेंगे तो हम वो प्ले करेंगे, बिकॉज आप समझ चुके हैं थीम क्या है. वेल, अब वो मीटर गेज ट्रेन बंद हो गई है, लेकिन आपके गाने अभी भी हमारे पास हैं. ये गाना ना सही, लेकिन दूसरा कोई गीत जरूर आपको सुनाएंगे. विद दैट, हमारे साथ जुड़े हैं राकेश माथुर जी, एंड वी हैव मंगेश जोशी, दिग्दर्शन और कविता शुभलक्ष्मी मस्तकर, प्रमोद चिंचोलकर, दीपा पालकर, विठल मुंगा से, विजेंद्र घाटो लखोला से, पंकज माहौर, मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, वडिंग खेड़ा पंजाब से, आरती अरोड़ा के साथ हमारे साथ और जुड़े हैं हिरमानी बोलगवे, एंड वी ऑल्सो हैव दत्ता केदार पंढरपुर से, यशवंत अठमुड़े, टी डी मल्होत्रा, चेतन कुमार, गुरमीत सिंह, मीता सिंह जी दिल्ली से, एंड वी हैव ऑल्सो जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पॉल डिकैस्ट्रो, विलिस डिकैस्ट्रो, जनकपुरी सहारनपुर से, संदीप अजमीरे यवतमाड से, लालगिरी गोस्वामी, मीरा सिंह, हीरामणि वर्मा, स्वरण सिंह, महेश बोहरा, अभिजीत गवानकर, ओमकार काटकर, अजय साखरे इंदौर से, फिरोज सिगनपोरिया, प्रणीत सोंदावले, संदीप कुमार, संदीप मक्कर, ज्योति मक्कर, मन्नत मक्कर, भ्रात मक्कर, कमल साहनी, पिंगवाला चौक, कोराया जलंधर से, एंड वी ऑल्सो हैव राम प्रजापति, अशोक पाटिल, वराली प्रकाश शिंदे, सुशेन नेहारकर, एंड द लिस्ट गोज ऑन. वेल, आप सभी 11 बजे से हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू सो मच. बट ठीक 1:30 पर आप सुनेंगे राष्ट्रीय मराठी समाचार, और 1:40 पर फिर से होगा प्रोग्राम शुरू. दैट मीन्स हमारे पास बहुत कम वक्त है, तो आप सभी की रिक्वेस्ट बहुत कोशिश भी करूँ तब भी शायद ना हो पाए. बट ये अगला गाना, चलिए 2 के लिए आप गाने तो नहीं, पर हाँ ये अगली प्यारी धुन जरूर सुनिए.

इस प्यार के नगमे ने कई दिलों को छेड़ दिया है। अब आपके जो मैसेजेस आ रहे हैं, यकीन मानिए, अब आपकी दिल की बातें मुझ तक पहुंच रही हैं। बड़ा ही प्यारा सा कॉल आया है मीना जी का भी, अंधेरी से हमें हमारी बात हुई अभी अभी, मज़ेदार किस्सा। लेकिन आपको सुनाऊंगी इससे पहले, ये जो गाना है ये हमें फिरोज सिकंदपुरिया जी ने रिक्वेस्ट किया था, क्योंकि ये कहते हैं कि इस गाने को सुनते ही उनको उनके पिताजी, क्योंकि उनके पिताजी को ये गाना बहुत पसंद था, तो जब कभी ये गाना सुनते हैं तो वो अपने पिताजी को याद करते हैं। वेल, इसके अलावा एक और कहानी जो आई है मेरे पास, आप सभी के मैसेजेस आ रहे हैं और यकीन मानिए आप सभी की कहानियाँ भी मैं पढ़ रही हूँ, पर क्योंकि हमारे पास लगभग सिर्फ 15 मिनट है तो मैंने सोचा क्यों ना अगली बार जब मैं आऊँ तो इन कहानियों का सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे। तो याद रखिएगा, मैं हूँ आरजे भावना, आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 107.1। आपकी अगर कहानी रह गई है अधूरी तो यकीन मानिए वो पूरी जरूर होगी अगली बार जब मैं आऊँगी लेकर हिट एंड हॉट रिक्वेस्ट आर। तो अपनी कहानियाँ संजो कर रखिएगा, इस बार ना सही तो अगली बार ज़रूर आपकी कहानी ऑन एयर जाएगी, क्योंकि दिल से निकली गई बात दिलों तक पहुँचनी चाहिए। वैसे ही एक कहानी आई है हीरामणि बोलेगावे की। वो कहती हैं कि मेरी फ्रेंड थी जिसको गुजरे हुए 1 साल हो गया, उसकी याद में मुझे ये गाना हमेशा याद आता है, तो प्लीज़ ये गाना उसके लिए प्ले कीजिएगा। उसका नाम भाग्यश्री पाडरे है। वेल, हीरामणि जी, आपकी दोस्त के लिए ये अगला गाना।

हमारे दिल जो है ना, हमने दरवाजे इतने जोर से बंद कर रखे हैं कि जब उन्हें खटखटाते हैं तो थोड़ा वक्त लगता है उसे खुलने के लिए। चलिए कोई गम नहीं, इस बार शायद आपके दिल के दरवाजे थोड़े देर से खुले हैं, क्योंकि अब मुझे बैक टू बैक मैसेजेस आ रहे हैं, इतनी सारी कहानियां, इतने सारे कॉल्स। पर अफसोस, मेरे जाने का वक्त ठीक 2 बजे, मैं यहाँ से विदा लूँगी। जाने से पहले 2 गाने आपको सुनाने वाली हूँ, और वो 2 गाने मैंने सुने हैं 2 लोगों के। आप लोगों की कहानी, आप लोगों के गाने, रिक्वेस्ट,

यकीन मानिए अगली बार जब मैं आऊंगी तब आपको आपकी फरमाइशें पूरी करूंगी जरूर। लेकिन याद रखिएगा थीम हम सेम फॉलो करने वाले हैं, देर से ही सही पर हम घर लौटे हैं। तो आपकी कहानियां, जो भी ये गाने आपके जज्बात अभी उमड़ रहे होंगे, इन्हें संभाल कर रखिए, संजो कर रखिए, ये आपके अपने हैं, खास हैं। और अगली बार बस उसी तरह प्यार से संजोए हुए सपने आप संभाल कर मुझ तक दीजिएगा, उतने ही प्यार से मैं सभी को आपके इमोशंस और आपके जज्बात बताना चाहूँगी। वेल, हमारे पास मैसेजेस तो बहुत सारे आए हैं, लेकिन आज शायद मैं आपके मैसेजेस ना ओपन करूं, नाम ज़रूर ले लूं ऊपर ऊपर से देखकर, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं कोई कहानी अभी से पढ़ लूं और अगली बार वो मुझे रिपीटिव या ऐसे लगे कि मैंने शायद ये कहानी बताई हो। तो इसके चलते मैं सिर्फ नाम लेती हूँ। विजेंद्र घाटोल अकोला से, नितिन स्वामी एरोली, प्रमोद चिंचोलकर हिरेन, एंड वी हैव मुकुंद कुलकर्णी पूना से। वो तो कहते हैं दो दिन पहले आपकी दिल्ली की ट्रैवल स्टोरी सुन ली, आज लिसनर्स की स्टोरी सुनी है। यकीन मानिए मैंने जो स्टोरी सुनी है वो अभी भी इतनी प्यारी है कि ये मैं अपने साथ घर लेकर जाने वाली हूँ। आनंद मुकाशी, हितेंद्र दास हमें सुन रहे हैं असम से, पंकज महोड़ हैं हमारे साथ जुड़े हुए फ्रॉम अमरावती, एंड वी ऑल्सो हैव प्रणव शिंदे, वी हैव एम डी पत्रोड़ा चक 5 अनूपगढ़ राजस्थान से, मंगल जनागल, श्रीमती रोशनी जनागल, अंकुर जनागल इंदु और डॉक्टर सुनील जनागल, ओमकार काटकर एंड दीपा पालकर हमारे साथ जुड़ी हुई है शुरुआत से, अभिजीत गवहानकर हमारे साथ हैं, श्रीमती सरिता गवहानकर, प्रणीता सिद्धांत गवहानकर, प्रिंस एकांश गवहानकर, लाला टुकटुक गवहानकर, वी ऑल्सो हैव सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि, अश्वी, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र शाह, पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से, दत्तात्रेय आदत वेलापुर, राकेश माथुर, एंड वी ऑल्सो हैव मंगेश जोशी जो सुबह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिग्दर्शन और कविता मेरठ कैंट से हमारे रेगुलर लिसनर, शुभलक्ष्मी मस्तकर जी विठल मुंगा से हमारे साथ हैं, यशवंत आठमुड़े जी कैसे हैं, दत्ता केदार पंडरपुर, मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, टी डी मल्होत्रा, चेतन कुमार गया बिहार से, गुरमीत सिंह जी, मीता सिंह जी दिल्ली से, वी ऑल्सो हैव जॉन डिकेस्ट्रो एंड संदीप अजमीरे यवतमाड़ से, मीरा सिंह, हीरामणि वर्मा, स्वरण सिंह, महेश बोहरा, अजय साखरे। आई होप मैंने आप सभी को सभी के नाम लिए हों। एंड विद दैट वी ऑल्सो हैव आर नेक्स्ट सॉन्ग जो आप सुनने वाले हैं, ये रिक्वेस्ट आई है, मैसेज पढ़ती हूँ आपके लिए, 5 मिनट है हमारे पास, बहुत कम, बट एक याद है, एक कहानी है विच आई वुड लाइक टू शेयर। आई एम पारुल फ्रॉम पुणे। सो देयर इज दिस ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन जो मेरी पुरानी दोस्त है, उसे मैं काफ़ी सालों बाद मिली और वो मुझसे हमेशा एक गाना हमेशा शेयर किया करता था, तो वो आजकल मैं लूप पर सुन रही हूँ, मुझे शेयर करता है वो गाना, वो ये है कायदे से फ्रॉम द मूवी मेट्रो। पर ऐसा था ही नहीं, फिर जो उन्हें लगा वो वैसा था नहीं, हार्ट ब्रेक तो हुआ पर ये गाना हमेशा सुनती हूँ तो उस इंसान का ख्याल आता है। वेल, दैट इज कायदे से सॉन्ग, तो वो आपको मैं अगला गाना ज़रूर सुनाऊंगी, बट उससे पहले एक और कहानी मेरे पास आई थी, वो गाना तो ना सही पर किस्सा ज़रूर सुनाऊंगी। अंधेरी ईस्ट से मीना जी हमसे शेयर करती हैं, वो जब बस में जा रही थी, ट्रैवल कर रही थी पिकनिक के लिए, और उनके भाई, उनके सब लड़कियों की ग्रुप थी और उनके साथ उनके भाई जा रहे थे। अब इस बस जर्नी में उन्होंने एक गाना सुना, वो गाना था तो इमोशनल पर इन्होंने जिस तरह से शब्दों का चयन किया, यानी जिस तरीके से उन्होंने लिरिक्स सुने, उसके कारण ये जर्नी मेमोरेबल हो गई, वो गाना उनके लिए यादगार हो गया और उनके भाई के लिए भी। अब ये स्टोरी क्या है? वेल, इसे मैं ब्रेक दूंगी क्योंकि ये स्टोरी आप सुनेंगे अगली बार जब हमारा प्रोग्राम होगा, और ये कहानी तब मैं कंटिन्यू करूंगी। विद दैट आपको क्लिफ हैंगर देते हुए अगला गाना ओनली फॉर पारुल फ्रॉम पुणे आपके साथ मैं लेती हूँ विदा। आप सुन रहे थे आरजे भावना को ऑन एफएम रेनबो 107.1, म्यूजिकली योर्स, कीप लिसनिंग।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगपुरम में ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने आधारभूत ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र के लिए 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले में कल हुए आतंकी हमले में घायल दूसरे मजदूर की भी मौत। 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत लगभग 200 रुपए कम हुई। ओडिशा में महानदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से बाढ़ की स्थिति गंभीर। और ताइपे ओपन बैडमिंटन में तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आंध्र प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है और केंद्र सरकार व्यापक अवसंरचना और औद्योगिक विकास के माध्यम से स्वर्ण आधार और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने भोगपुरम में आज अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हवाई अड्डे, सड़क और ऊर्जा अवसंरचना सहित लगभग 18,000 करोड़ रूपये की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं।
1: आज यहाँ करीब 18,000 करोड़ रुपीज की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत में विमानन क्षेत्र के तेजी से होते विस्तार का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि देश में परिचालित हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर 166 हो गई है और उड़ान योजना ने आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा को किफायती बना दिया है।
1: एक समय था जब हवाई उड़ानें सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित थी। एनडीए सरकार में आज छोटे शहर के साधारण लोग भी फ्लाइट से आ जा रहे हैं। 12 इयर्स में सिर्फ एयरपोर्ट की संख्या ही नहीं बढ़ी है।

0: हमारी उड़ान योजना के कारण आज गरीब परिवार के लोगों को भी जहाज में बैठने का अवसर मिल रहा है। इस योजना ने गरीब से गरीब को अपना सपना पूरा करने में मदद की। कुछ दिन पहले ही सरकार ने उड़ान योजना के दूसरे फेज की शुरुआत की। इस पर भी 29,000 करोड़ रुपीज खर्च किए जाएंगे।
1: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने इस हवाई अड्डे के उद्घाटन को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के विकास में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूरु पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे।
2: प्रधानमंत्री द्वारा आज उद्घाटन किए जाने वाले विवेका स्मारक स्वामी विवेकानंद के विचार और सिद्धांत के प्रचार कार्य के लिए बनाया गया है। 75 स्क्वायर फीट में फैले इस स्मारक के साथ 4D एक्सपीरियंस सेंटर, प्रदर्शनी स्थान, एम्फीथिएटर, पाठशाला, कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्रंथालय, ध्यान और योगा केंद्र भी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण आश्रम की ओर से यहाँ शिक्षा के साथ युवाओं को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: तेल विपणन कंपनियों ने आज 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें लगभग 200 रुपए कम कर दी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस फैसले से रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल और खाने पीने के कारोबार से जुड़े लोगों को राहत मिलेगी।
3: वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें कम होने के बाद दिल्ली में वाणिज्यिक सिलेंडर का मूल्य अब 2,738 रुपए हो गया है। वहीं कोलकाता में अब वाणिज्यिक सिलेंडर 2,872 रुपए 50 पैसे, मुंबई में 2,691 रुपए 50 पैसे और चेन्नई में 2,906 रुपए में मिलेगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अनुसार वाणिज्यिक सिलेंडर की नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। सकलीन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: वस्तु और सेवा कर GST संग्रह में पिछले महीने उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है और ये 2,11,205 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये जुलाई 2025 में 1,83,065 करोड़ रुपए के मुकाबले 15.4% की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सकल घरेलू GST राजस्व 1,44,695 करोड़ रुपए रहा। ये एक वर्ष पहले की तुलना में 10.1% अधिक है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के केलम में आतंकी हमले में घायल दूसरे श्रमिक की आज सवेरे मृत्यु हो गई। इससे मृतकों की संख्या 2 हो गई है। एक रिपोर्ट।
4: वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि घायल श्रमिक की मौत श्रीनगर के एक अस्पताल में चिकित्सा के दौरान हुई। कल शाम ईंट भट्टे पर काम कर रहे इन दो श्रमिकों पर अज्ञात आतंकवादियों ने गोलीबारी की थी। घटना के तुरंत बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए तलाश अभियान जारी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मजदूरों की हत्या की कड़ी निंदा की और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। कुलगाम जिला प्रशासन की ओर से 6-6 लाख रुपए की तत्काल सहायता भी दी जाएगी। श्रीनगर से इश्फाक शाह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: तेलंगाना में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के लिए निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम में संशोधन किया है। इसमें बूथ स्तर के अधिकारी 10 अगस्त तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा अब 17 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा। दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 17 अगस्त से 16 सितंबर तक जारी रहेगी, जबकि उनका निपटान 15 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 19 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। ओडिशा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तिथि निर्वाचन आयोग ने बढ़ाकर इस महीने की 19 तारीख कर दी है। दावों और आपत्तियों के निपटान की समय सीमा भी 17 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। आयोग ने बताया कि ओडिशा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर इस समय सारणी में संशोधन किया गया है। दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल आज से शुरू हो गया है। पात्र महिलाएं आधिकारिक वेबसाइट dly.delhi.gov.in पर पंजीकरण कर सकती हैं। दिल्ली सरकार ने पिछले महीने दिल्ली मंत्रिमंडल की इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी, इसका ऐलान किया था। वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए 5,110 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस के नशा

0: मुक्त अभियान नशे से दूरी है जरूरी के दूसरे चरण ने 5 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। लंदन स्थित वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इन सभी 5 उपलब्धियों को मान्यता दी है। इस अभियान ने कई विश्व रिकॉर्ड भी बनाए हैं। इंदौर पुलिस आयुक्त कार्यालय ने 17 लाख से अधिक लोगों को नशा विरोधी ई शपथ दिलाई और 8,534 प्रतिभागियों की मानव श्रृंखला बनाई। रेलवे ने पूर्वी मध्य रेलवे के 29 किलोमीटर लंबे दानापुर से फतोहा खंड पर 976 करोड़ रुपए की लागत से एक से अधिक लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस परियोजना से पटना रेल कॉरिडोर के सबसे व्यस्त खंडों में से एक पर भीड़ कम होगी और यात्री और माल ढुलाई सेवाओं में वृद्धि संभव होगी। मंत्रालय ने बताया कि परिचालन के पहले वर्ष में इस परियोजना से प्रतिदिन 22 अतिरिक्त यात्री ट्रेन और 18 अतिरिक्त मालगाड़ी चल सकेंगी। इससे प्रति वर्ष 52 लाख टन अतिरिक्त माल ढुलाई की क्षमता भी बढ़ेगी। आयकर विभाग ने बताया है कि वर्ष 2026-27 के लिए 31 जुलाई 2026 तक 59 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए। सोशल मीडिया पोस्ट में करदाताओं को धन्यवाद देते हुए विभाग ने कहा कि उनका विश्वास और समय पर अनुपालन ही भारत के विकास को गति देने वाली ऊर्जा प्रदान करता है। वाइस एडमिरल A.N. प्रमोद ने आज नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। गोवा स्थित नौसेना अकादमी के 38वें एकीकृत कैडेट पाठ्यक्रम के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल A.N. प्रमोद जुलाई 1990 में नौसेना में कमीशन हुए थे। 36 वर्ष से अधिक के अपने विशिष्ट करियर में कई पदों पर उन्होंने कार्य किया। दिसंबर 2023 से जुलाई 2026 के बीच नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में वे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नौसेना की योजना तैयारी और चालन तत्परता में सक्रिय रूप से शामिल रहे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, इससे राज्य में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने राज्य में अधिक बारिश का अनुमान व्यक्त किया है।
1: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है क्योंकि महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे कटक, पुरी, जगतसिंहपुर, केंद्रापड़ा और खुर्दा जिलों के निचले इलाकों में फिर से बाढ़ आने की खतरा पैदा हो गया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज भद्रक, बालेश्वर, जाजपुर और केवंझर जैसे बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया ताकि स्थिति का जायजा लिया जा सके और राहत कार्यों की समीक्षा की जा सके। भद्रक में कई गाँव बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं, सड़कों का संपर्क टूट गया है और संचार व्यवस्था बुरी तरह बाधित है, जिससे हजारों लोग भोजन, पीने का पानी और जरूरी सामान के लिए जूझ रहे हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, केरलम और माहे में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, विदर्भ और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन बिजली गिरने की स्थिति बनी रहेगी। राजधानी दिल्ली में आज शाम कई स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: ताइपे ओपन बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा ने आज सेमीफाइनल में शानदार जीत के साथ महिला सिंगल्स के फाइनल में अपनी जगह पक्की की। 17 वर्षीय तन्वी ने चीनी ताइपे की हुआंग यू हुसून को सीधे गेम में हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई है। फाइनल में अब तन्वी का मुकाबला वियतनाम की थुई लिन्ह गुएन से होगा। उन्नति हुडा सेमीफाइनल में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। उधर ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत के पास कई पदक जीतने के मौके हैं। बॉक्सिंग में ओलंपिक पदक विजेता लवलीना गोहन की अगुवाई में 10 मुक्केबाज फाइनल मुकाबले खेलेंगे। अस्मिता डे और हर्ष सिंह के कल जूडो में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने के बाद जूडो खिलाड़ी भी मैदान में उतरेंगे। लॉन बाउल्स में नवनीत सिंह और दिनेश कुमार की पुरुष डबल्स जोड़ी इंग्लैंड के खिलाफ महत्वपूर्ण मैच खेलेगी, विजेता सेमीफाइनल में पहुंचेगा। खिलाड़ी पैरा एथलेटिक्स और ट्रैक साइकिलिंग में भी पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे।
0: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति बढ़ती जा रही है। पिछले 4 दिनों में पाकिस्तानी सेना की हिंसक कार्रवाई में 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के सदस्य सरदार उमर नजीर कश्मीरी ने आरोप लगाया कि इन मौतों के लिए सुरक्षा बल जिम्मेदार हैं। एक और बयान में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कहा कि मुजफ्फराबाद इलाके में देर रात तक विरोध प्रदर्शन जारी रहे। लोग अपने बुनियादी अधिकारों की सुरक्षा और स्थानीय अधिकारों द्वारा गए वायदों को पूरा करने की मांग को लेकर सड़कों पर डटे रहे। इस बीच अमेरिका स्थित मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने निहत

0: लगते प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा बल प्रयोग की निंदा की है। संगठन ने पाकिस्तानी अधिकारियों से कार्रवाई रोकने, मोबाइल संचार सेवाएं बहाल करने और बल के किसी भी गैर कानूनी इस्तेमाल के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की है। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच सीमा पर व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। दोनों देशों के बीच व्यापार 6 वर्षों से रुका हुआ था। इससे 6 साल से ज्यादा समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। भारत और रवांडा ने आपसी व्यापार को बढ़ाने के अपने संकल्प को दोहराया है। नई दिल्ली में हुई भारत रवांडा संयुक्त व्यापार समिति की बैठक के पहले चरण में दोनों पक्षों ने वस्तुओं और सेवाओं के आपसी व्यापार की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष आपसी व्यापार के दायरे को विविधतापूर्ण बनाने, व्यापारिक संबंधों को आसान बनाने और बाजार तक पहुंच से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने से जुड़ी पहलों पर सहमत हुए। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने रात भर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। इसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 22 घायल हो गए। यह हमला पूरे यूक्रेन में रूस के बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले के ठीक 2 दिन बाद हुआ है, जिसमें 10 नागरिकों की मौत हो गई थी और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने कहा कि देश सेवा के प्रति उनका समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगपुरम में ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने आधारभूत ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र के लिए 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले में कल हुए आतंकी हमले में घायल दूसरे मजदूर की मौत। 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत लगभग 200 रुपए कम हुई। उड़ीसा में महानदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से बाढ़ की स्थिति गंभीर। और ताइपे ओपन बैडमिंटन में तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाश

5:03 का वक्त और आप लुत्फंदोज होना शुरू हो चुके हैं अपने दिल की आवाज़ आदित्य के साथ। जी, लव यू जिंदगी का वक्त हो चला है और बातें कुछ जिंदगी से लबरेज और जिंदा दिली से लबरेज। तो बातों की इब्तिदा अभी से कर देते हैं और एक बात है कि ये जो वक्त है अपनी रफ्तार से गुजर रहा है और इसी के साथ गुजरती जाती हैं कुछ चीज़ें, वो चीज़ें जो आने वाले वक्त के साथ शायद उतनी अहमियत नहीं रखती, लेकिन इंसान की एक फितरत है वो गुजरे हुए वक्त से मौजूदा वक्त की तुलना करना नहीं छोड़ता और ज़्यादातर वक्त में तो वो गुजरा हुआ वक्त ही हसीन लगता है, उसे ही हसीन कहता है। और इसी सोच में जब हम अपने वर्तमान को देखते हैं तो वो शायद उतना अच्छा महसूस नहीं होता और हम फिर अपने वर्तमान को, अपने प्रेजेंट को उतने अच्छे से जी भर के जी भी नहीं पाते, जबकि हो सकता है कि जब ये वक्त गुजर जाए तो हमें यही वक्त जो मौजूदा वक्त है अभी गुजर रहा है उसे ही हम याद करें और उसे ही सबसे खुशनुमा, सबसे हसीन और सबसे अच्छा वक्त कहें, गोल्डन पीरियड बताएं। तो मेरे दोस्त, ये कोशिश आज से ही क्यों नहीं, जी लीजिए आज का, अपना अभी का हर लम्हा हमारे साथ, यानी अपने दिल की आवाज आदित्य के साथ 107.1 FM रेनबो मुंबई पर, दिल से दिल तक। और जिंदगी को कह दीजिए लव यू जिंदगी।

5:15 का वक्त और आप लुत्फंदोज हो रहे हैं अपने दिल की आवाज़ आदित्य के साथ और कुछ जिंदगी से लबरेज बातें। तो ऐसा है ना कि कहीं भी कुछ अधूरा सा रह जाता है ना या पीछे छूट जाता है तो ऐसा लगता है कि आप उसे आसानी से भूल जाएंगे या भूल गए हैं, तो ऐसा नहीं होता। लंबे अरसे तक वो बात आपके जहन में रहती है और आप पर उतना ही असर छोड़ती है। रिश्तों में भी ऐसा ही होता है, अगर कोई बात गलत मोड़ पर खत्म हो जाए तो हमेशा वो एक कसक बनकर दिल को दर्द देती है, क्योंकि वो बात खत्म करके दूर जाने पर हमारी जुबान तो कुछ देर के लिए खामोश जरूर हो जाती है, पर जब हमारे जहन में एक अजब सी बेकरारी पैदा होती है या बेकरारी का आलम होता है तो उसका कोई जवाब नहीं होता, जो शायद उस बात के मुकम्मल तौर पर कहे जाने पर ही शांत होती है। होता है ना ऐसा।

5:22 का वक्त और आप लुत्फंदोज हो रहे हैं अपने दिल की आवाज आदित्य के साथ। तो बात कुछ यूं है कि प्रकृति और ईश्वर ने कितनी खूबसूरत खूबसूरत नेमतों से हमें नवाजा है, कितनी खूबसूरत ब्लेसिंग से नवाजा है। जहां हमारे पास खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए आंखें हैं, महसूस करने के लिए मन है और कैद करने के लिए स्मरण शक्ति है, मेमोरी है, और सबके लिए ये सारा सिस्टम मौजूद है। अब जिम्मेदारी हमारी है कि हम इनके इस्तेमाल से अपनी चीज़ों को कैसे खूबसूरत बनाते हैं, हम क्या देखना चाहते हैं, क्या महसूस करना चाहते हैं, क्या याद रखना चाहते हैं और क्या भुला देना चाहते हैं। मेरे ख्याल से ये इशारा काफ़ी है कि आप किन चीज़ों को याद रखना चाहते हैं और किन चीज़ों को वक्त रहते भुला देना चाहते हैं, क्योंकि भूल जाना भी एक नेमत है। बहुत सारे लोगों से बहुत सारी चीज़ें जब नहीं भुलाई जाती तो शायद उनकी परेशानी का सबब बन जाती हैं वो चीज़ें, जो उन्हें कहीं बहुत गहरे बहुत अंदर तक परेशान करती हैं और कभी कभी टूटकर बिखरने पर मजबूर भी कर देती हैं, और फिर वहाँ से संभलना एक मुश्किल रास्ता दिखाई देता है। तो उस मुश्किल रास्ते पर जाने के पहले ही आप एहतियातन कुछ चीज़ों को भुला दें और कुछ चीज़ों को अपने जहन में इस तरह से कैद कर लें कि वो जब भी आपको याद आए तो वो एक खुशनुमा एहसास देकर जाएं, आपको खुश कर जाएं और आपको आगे का रास्ता खुशी खुशी जीने पर मजबूर कर दें। जैसे कि आप रेनबो को सुनते वक्त हो जाते हैं, तो इसी तरह ये मोहब्बतों वाला साथियों ही बना रखिए। सुनते रहिए 107.1 FM रेनबो, और ये खूबसूरत सा गाना भी ये कह रहा है, सुनो ना सुनो ना।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424242।

0: 4-2-4-2। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700-001-4242 पर।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

लव यू जिंदगी में लुत्फ अंदोज हो रहे हैं आप अपने दिल की आवाज़ आदित्य के साथ और बातें हैं जिंदगी से लबरेज, जिंदा दिली से लबरेज और जिंदगी को कुछ बेहतर दिशा देने वाली। तो एक बात ये भी है कि जहन में आ रहे बेतहाशा ख्यालात और उन ख्यालात को बेतरतीबी ढंग से जुबां से बयां कर देने का नाम बात करना नहीं है। हमने भाषा के क्रमिक विकास को समझकर व्याकरण की मदद से बोलना तो सीख लिया है, पर शायद हमने बात करना अभी भी नहीं सीखा। उसके लिए हमें अपने दिल के थोड़ा करीब जाने की जरूरत है और वो बातें जो हमारा दिल हमसे बुलवाना चाहता है हमें उनकी तरफ जाना चाहिए, उन्हें ही बोलना चाहिए। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में आप हमें बता सकते हैं व्हाट्सएप करके 8657661071 पर। सुनते रहिए, ये मोहब्बतों भरा साथ यूं ही बनाए रखिए। और एक बेहद खूबसूरत सा गाना हम आप तक पहुंचा रहे हैं जो ऐसी ही बातों को और मोहब्बत से लबरेज कर देगा और सोचने पर मजबूर करेगा। सोचिए और सुनिए और एंटरटेन होते रहिए।

5:08 का वक्त और आप लतवन दोस्त और अपने दिल की आवाज़ आदित्य के साथ और बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारी मोहब्बतें हम तक पहुंच रही हैं और हमारे पास वैदेही जी का मैसेज आ गया है, उनको गाना बहुत अच्छा लगा है और ओमकार काटकर साहब का मैसेज आ गया है हमारे पास और जो बातें पिछले दौर में हमने अर्ज की थी, पिछले कट में हमने अर्ज की थी, उन बातों को आगे बढ़ाते हुए आपने कुछ बातें लिखी हैं और आपने लिखा है कि सबसे ख़तरनाक भूलने की चीज़ किसने किसी का किया हुआ अपमान, ऐसा अगर आप अच्छा लिखना चाहते हैं ओके, जब वो भूलने की कला से अवगत हो जाए तो मज़ा ही कुछ और होता है। मैं बहुत दिन से प्रयास कर रहा हूँ लेकिन नहीं जम रहा है सर। ओके जी, कोशिश करते रहना इंसान का फ़र्ज़ है, आप वो कोशिश कर सकते हैं, वही आपके हाथ में और कोशिश ही कामयाब होती है। ऐसा करते रहें आप तो हो सकता है एक ना एक दिन ज़रूर कामयाब हो। और संजय दर्शन जी का मैसेज हमारे पास आ गया है, दिल की भावना को शब्दों में लिखना हमेशा आसान नहीं होता लेकिन जब ये कागज़ पर उतरती है तो सीधे दूसरों के दिलों को छू जाती है। आप अपनी भावनाओं को शायरी या कविता या एक प्यारे संदेश के रूप में सामने आ जाती है। अच्छा ओके, तो खूबसूरत सी बात आपने भी लिखी है और दीपा पालकर जी भी ऐसी ही बातें लिख रही हैं। हमें लगता है कि आप कहना चाहते हैं कि मेंदू की आज्ञा समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या लिखना चाह रही हैं। खैर, महेश बोहरा साहब का मैसेज हमारे पास आ गया है, राजस्थान से आप हमें मैसेज करते हैं, जिंदगी सुख दुख सफलताओं असफलताओं और अनुभवों का एक खूबसूरत संगम होता है, ये कैसी पहेली है बल्कि जीने का अनुभव का एक सफर होता है, इसलिए बीती बातों से पैदा होते तनाव को भूलकर भविष्य की चिंताओं को याद रखते हुए आज और अभी के पल में जीना ही असली जिंदगी है। वाह, खूबसूरत सी बात आपने भी अर्ज की है। और भी तमाम सारे मैसेजेस हमारे पास आ गए हैं, मसलन अगर हम नाम पढ़ के सुनाना चाहें तो प्रदीप जी का मैसेज आ गया है, विजेंद्र जी का मैसेज आ गया है, रजनीकांत

दिल साहब का मैसेज आ गया है और हसमुख जी का मैसेज आ गया है, अरविंद जी का मैसेज आ गया है और राकेश माथुर जी का मैसेज भी हमारे पास आ गया और सभी ने लगभग इसी बात के आसपास कुछ बातें अर्ज की हैं और आगे अगर वक्त मिला तो हम ज़रूर उन बातों तक आपको पहुंचाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम आपको एक सोना सा प्यारा सा गाना पहुँचा रहे हैं, सुना रहे हैं। आप सुन रहे 107.1 FM रेनबो मुंबई।

छह बजकर कुछ सेकंड्स का वक्त और कुछ वक्त हमारे और आपके दरमियान और हैं और कुछ बेहतरीन से मैसेजेस हमको मिल चुके हैं और हमारे कह सकते हैं कि मन से मन मिला चुके हैं लोग और उसी तरीके की बातें भी हम तक पहुंच रही हैं और बहुत सारे ऐसे ख्यालात जिनको आमतौर से आप उन तक पहुंचते भी नहीं हैं, वैसे ख्यालात की बातें हम तक पहुंच रही हैं। इसके लिए बेहद शुक्रिया कि आपने हमारे मन से मन मिला लिया और हमारे गाने भी आपको ठीक लग रहे हैं और कुछ लोगों ने कुछ और तारीफें भी की हैं, उसके लिए भी बेहद

शुक्रिया। और फिलहाल हम जाते जाते एक बात और अर्ज करना चाहेंगे आपसे कि अगर कभी खामोशी को तोड़ने के लिए आप बोल रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि शायद खामोशी को तोड़ने के लिए या खामोशी को ख़त्म करने के लिए अगर हम बोल रहे हैं कोई भी बात तो शायद उसका उतना असर ना हो, या हो सकता है उस कोशिश के बाद हो सकता है कि कुछ गलत भी आपके मुंह से निकल जाए। क्योंकि जब आपके पास कहने को बहुत कुछ नहीं होता तब आप बोलने की कोशिश करते हैं, तो शायद कभी कभी आपके मुंह से कुछ ऐसे हर्फ, ऐसे शब्द, ऐसे अक्षर निकल जाते हैं जिनका कोई मोल नहीं होता, और वो शायद आपकी बातें ख़राब भी कर सकते हैं, है ना। और एक शेर भी ऐसी बात के आसपास के ऐसी वैसी बातों से तो अच्छा है खामोश रहो, ऐसी वैसी बातों से तो अच्छा है खामोश रहो, या फिर ऐसी बात कहो जो खामोशी से बेहतर हो। और हम ऐसी बात कह नहीं रहे, ऐसी बात सुनवा रहे हैं आपको। सुनते रहिए 107.1 एफएम रेनबो। एक समाचार का अंतराल और उसके उस पार मिलेंगे एक बेहद खास प्रोग्राम अंदाज़े बयां में, तो कहीं मत जाइए, सुनते रहिए।

0: मोहब्बत एक ऐसा एहसास जिसके आसपास लगता है कि सारी कायनात और सारे एहसासात सारे ख्यालात बुने गए हैं। तभी तो कोई शायर, कोई कवि या कोई भी कलाकार उसकी हर रचना में मोहब्बत का जिक्र या मोहब्बत का नुमाया होना लाजमी है। अशरफ जहांगीर साहब अर्ज करते हैं कि अभी कुछ दिन नहीं होगी मोहब्बत, अभी कुछ दिन नहीं होगी मोहब्बत, अभी भूला नहीं पिछली मोहब्बत, मैं तुमको इस तरह भूला हुआ हूं, मैं तुमको इस तरह भूला हुआ हूं कि हो सकती है तुमसे भी मोहब्बत। मोहब्बत का यही आलम है, कभी इंसान दूसरे शख्स को, खुद को भुलाकर उस दूसरे शख्स को अपने अंदर पैबस्त कर लेता है और इस तरह मोहब्बत करता है, और कभी कभी एक अकीदत के भाव में, एक ऐसी आस्था में डूब जाता है जिसमें इंसान को उसका आशिक खुदा नजर आने लगता है, और फिर वो दीवानों की तरह कह उठता है, क्या ये
1: प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

इश्क में तमाम सारे ख्यालात से जब इंसान गुजरता है तो बहुत सारे नए एहसासात उसके अंदर पैदा होते हैं, और फिर वो कभी शायरी में ढल जाते हैं, कभी शेर में। विनीत आशना साहब फरमाते हैं कि जो नशे सस्ते हैं उनमें एक याराना भी है, जो नशे सस्ते हैं उनमें एक याराना भी है, इश्क महंगा शौक है और उस पे जुर्माना भी है। उससे मिलने जाते जाते रुक गया ये सोचकर, उससे मिलने जाते जाते रुक गया ये सोचकर, सिर्फ जाना ही नहीं है लौट कर आना भी है। इश्क की गिरफ्त में पड़े आशिक अक्सर लौट कर नहीं आ पाते, वो वहीं अपने महबूबा के जाल में, अपनी माँ बाबा के जुल्फ के गिरफ्त में गिरफ्तार हो जाते हैं।

बशीर बद्र साहब फरमाते हैं कि लहरों में डूबते रहे दरिया नहीं मिला, लहरों में डूबते रहे दरिया नहीं मिला, उससे बिछड़ के फिर कोई वैसा नहीं मिला। कुछ लोग थोड़ी देर तो अच्छे लगे मगर, कुछ लोग थोड़ी देर तो अच्छे लगे मगर, हम जिसके हो सकें कोई ऐसा नहीं मिला।

इश्क अपने साथ सिर्फ इश्क का एहसास नहीं और बहुत सारी चीजें साथ में लेकर आता है। पागलपन, दीवानगी, बेखरारी, बेताबी और एक हद तो यह आती है जब लगता है कि इश्क में मेरे जैसा पागल कोई हो ही नहीं सकता। वहीं ताशना साहब फरमाते हैं कि इश्क में पागल कोई मुझसे ज्यादा भी नहीं, इश्क में पागल कोई मुझसे ज्यादा भी नहीं, पर मैं उसके आधे के आधे का आधा भी नहीं।

6:57 का वक्त और अंदाज़े बयां का वक्त यहीं तक, और यहीं तक नहीं कहना चाहिए, एक गज़ल और सुनवाएंगे आपको, फिर उसके बाद आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम जहां पर अल्फाज होंगे आपके और शब्द होंगे हमारे, या कहेंगे आवाज़ होगी हमारी। उसके लिए आप हमें अपनी पसंद के गाने हमें भेज सकते हैं 8657661071, यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है, फिर से सुन लीजिए 8657661071। और अगर आप कॉल करके अपनी आवाज़ में हमें अपनी बात दर्ज कराना चाहते हैं तो 4515-4132 और 33 ये हमारे कॉलिंग नंबर्स हैं, और हम यहाँ पर आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। फिलहाल आपको जोड़ते हैं एक और बेहद खूबसूरत सी गज़ल के साथ, सुनते रहिए 107.1 FM रेनबो मुंबई।

0: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz. Musically yours.
1: सात बजकर दस मिनट और देखते देखते 11 मिनट भी हो गए हैं और कुछ सेकंड्स हो चले हैं और आप लुत्फंदोज होना शुरू हो चुके हैं। जब हम लुत्फंदोज होना कहते हैं तो शायद कुछ लोग उसका मीनिंग थोड़ा सा उनको मुश्किल पड़ता होगा, तो उसके लिए हम आज बता देते हैं कि लुत्फंदोज यानी कि लुत्फ लेना, किसी चीज़ का मज़ा लेना, एंटरटेन होना, मनोरंजित होना, तो उसका माने ये होता है कि आप लुत्फंदोज हो रहे हैं FM रेनबो के साथ और अपने दिल की आवाज आदित्य के साथ। और ये प्रोग्राम हम तुम यानी जिस प्रोग्राम को हम और आप मिलकर दोनों साथ में करते हैं, आप हमें बोलने के लिए लव्स देते हैं, बातें देते हैं और प्ले करने के लिए गाने देते हैं और उन्हें हम आपके मोहब्बत के तले प्ले करते हैं और आपको सुनवाते हैं। और इसी तरह से हमारे पास एक मोहब्बत की एक लंबी सी फहरिस्त, एक लिस्ट तैयार हो गई।

या उनमें बहुत सारे बहुत ही सुंदर सुंदर गानों के साथ नाम हमें दिखाई पड़ रहे हैं, तो कुछ नाम हम पढ़ते हैं। महाराज कीर्तनपुरी जी का मैसेज आ गया हमारे पास, राजेंद्र परमार जी का मैसेज है, अजय साकरे जी का मैसेज है, विजेंद्र जी का मैसेज है, दीपा पालकर जी का मैसेज है, महेश बोरा साहब का मैसेज है, प्रणव शिंदे जी का मैसेज है, अरविंद कुलकर्णी जी का मैसेज है, दत्ता केदार पंडरपुर जी का मैसेज है, फिरोज जी का मैसेज है, और फिरोज जी ने ऐसा नाम लिखा हुआ है, फिरोज फैमिली एंड फ्रेंड्स, वाओ क्या बात है। और दिग्दर्शन और कविता जी का मैसेज है हमारे पास, हितेंद्र दास जी और रजनीकांत पाटिल जी, फिरोज सिकानपोरिया साहब, राकेश माथुर जी, पंकज मोहत साहब, वैदेही जी, अशोक पाटिल जी, चंद्रकांत रोडे साहब, संजय दर्शन जी और आदर्श कनौजिया जी, ओमकार काटकर साहब, प्रदीप अनंत कृष्णन साहब, हंसमुख जी माटुंगा से मैसेज करते हैं, और मंगेश जोशी जी, बाबा जी, इन सभी के मैसेजेस हमारे पास दर्ज हो चुके हैं। और अब चलते हैं पहली दो फरमाइशों से जिनसे हम आपको लुत्फानंदोज कराएंगे उसकी तरफ। तो पहला जो गाना आप सुनेंगे वो यश शिंदे जी की फरमाइश का सुनेंगे, और उसके तुरंत बाद एक खूबसूरत सा गाना सुनेंगे आप अजय साकरे जी की फरमाइश का। तो दोनों गाने आप बैक टू बैक सुनिए और लुत्फानंदोज होते रहिए अपने दोस्त अपने दिल की आवाज आदित्य के साथ, ओनली ऑन 107.1 FM रेनबो।

7:26 का वक्त और आप लुत्फंदोज हो रहे हैं आपके अपने प्रोग्राम हम तुम में आदित्य के साथ। और बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारी फरमाइशें विजेंद्र साहब के हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आ गए और एक फोन कॉल भी आया और उन्होंने हमें 3 फिल्मों के गाने भेजे और उन में से कहा कि कोई भी आपको जो अच्छा लगे वो बजा दीजिएगा। तो इनका गाना भी हमने क्यों कर दिया है। और

साथ ही हमारे पास अरविंद कुलकर्णी जी का मैसेज आया हमारे पास और उन्होंने भी एक बहुत ही खूबसूरत से गाने की फरमाइश हम तक पहुंचाई, तो हम आपको वो दोनों ही गाने सुनवाते हैं और जब लौट कर आते हैं इन दोनों गाने के बाद तो कुछ थोड़ी सी बात तफसील में होगी, आपके मैसेजेस पढ़े जाएंगे और आप अगर कोई भी बात करना चाहते हैं तो वो हमें यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं, है ना। तो हम आपसे ये दरख्वास्त करेंगे कि आप ये मोहब्बतों भरा साथ यूं ही बनाए रखिए और कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम हैं ना, मैं हूँ ना।

7:39 मिनट का वक्त और ये वक्त बहुत तेजी के साथ गुजरता हुआ और इसी के साथ हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे नए नाम भी हमारी इस फहरिस्त में शामिल हो चुके हैं। और हमारे पास इसी तरह का एक नया नाम बलकरण वर्मा जी का मैसेज आ गया है हमारे पास, और आपने जिस गीत की फरमाइश की है वो हम अगले चंक में क्यों करने की कोशिश करेंगे। और आपने संयुक्त रूप से मैसेज भेजा है, कई सारे लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। बलकरण वर्मा जी, अंजनी, ज्योति वर्मा जी, प्रहलाद, भरत वर्मा जी, बंटी, बबली वर्मा जी, आप सभी का मैसेज भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जी, संजय दर्शन जी हमें बहुत लंबा सा एक मैसेज भेजते हैं, दिल की भावना को शब्दों में लिखना हमेशा आसान नहीं। अच्छा, ओके, ये तो आपने शायद पहले ही भेजा था और हम ये पढ़ भी चुके हैं। थैंक यू मेरी बात को ऑन एयर रखने के लिए, जी थैंक यू भी आ गया है आपका। और उदित नारायण जी का कोई सोलो सॉन्ग सुनना चाहते हैं आप, तो कोशिश ये रहेगी कि जो दूसरे गाने हैं उनमें ही उदित नारायण जी की आवाज़ को आप सुन लें और लुत्फानंदोज हो लें। और हमारे पास प्रणव शिंदे जी का मैसेज आ गया है और वो हमें इन एडवांस मैत्री दिवस की शुभकामनाएं देते हैं। जी, हम भी आपको हार्दिक शुभेच्छा प्रेषित करना चाहते हैं और इसी तरीके से हमारी, आपकी और रेनबो की दोस्ती यूं ही बरकरार रहे और दिन पर दिन ये नया उरूज अता करे। और हमारे पास इसी तरीके का एक नाम तो नहीं है इसमें, मैसेज नंबर से आया है और प्लीज़ प्ले माई सॉन्ग ड्यूरिंग रिक्वेस्ट आर, ओके, तो आपका सॉन्ग हमें नहीं दिख रहा है, ओके, मैं ढूंढने की कोशिश करूंगा, हो सकता है कई मैसेजेस में आपका नाम नीचे चला गया हो। और वैदेही जी का थैंक यू सो मच आ गया है, ओके, आपका वीकेंड बहुत अच्छा बीता हमारे साथ, ऐसा आप कहना चाहती हैं तो बहुत शुक्रिया। और राकेश माथुर जी ने बहुत सारे गानों की एक फहरिस्त भेजी थी हमें, लेकिन उनमें से कई गाने हम ढूंढने में असमर्थ रहे, तो आपने कहा है कि हमारी पसंद का कोई भी गाना सुन लेना चाहते हैं। जी, तो हम भी अपनी पसंद, जो हमारे साथ दूसरे श्रोता जुड़े हैं, दूसरे सुनने वाले जुड़े हैं, उनके साथ शामिल कर देते हैं और उनकी पसंद में आपकी पसंद भी शामिल कर देते हैं। और दत्तात्रेय साहब का मैसेज हमारे पास आया है, आप लिखते हैं कि हम कार्यक्रम सुन रहे हैं लेकिन गीत पसंद का

नहीं भेज, अच्छा अपनी पसंद का गीत नहीं भेज रहे हैं, आप केवल सुनना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। कभी कभी हमारे लिए बहुत कश्मकश का विषय हो जाता है जब बहुत सारे गीत आ जाते हैं, और आज भी इनफैक्ट कुछ फरमाइशें ऐसी हैं जो शायद प्ले ना हो सकें क्योंकि वक्त बहुत कम बचा हुआ है और शायद हमको लगता है हम ज़्यादा बोल रहे हैं, लेकिन आपका सबका नाम लेना भी बहुत ज़रूरी है। मुकेश कश्यप जी का मैसेज आया है, नमस्कार जी, आपको जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से आप मैसेज भेजते हैं।

हमारे पास मैसेज आया है महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी जी का, और आपने भी एक गाने की फरमाइश भेजी और साथ ही कई नाम भी लिखे हैं। लक्ष्मी देवी गोस्वामी जी, योगेश पुरी जी, टिंकल जी, डिंपल जी, मीनाक्षी जी, निशा जी, तुलसी जी और दिशा गोस्वामी जी, आप सभी का दिल से धन्यवाद। और अजय साकरी जी की फरमाइश का एक गाना प्ले हो चुका है, लेकिन आपने हमें दोबारा से एक गाना भेजा है तो ये तो थोड़ी सी गलत बात है। हमारे पास कुछ नए नाम और शामिल हो गए हैं इसी दौरान। अशोक पाटिल जी का मैसेज आ गया है और आप एक गाने की फरमाइश हमें भेजते हैं। चंद्रकांत रोडी साहब का मैसेज आ गया है, आप लिखते हैं आपका प्रोग्राम फार छान आहे। ओके, मतलब आप तारीफ करना चाहते हैं, इतनी थोड़ी सी मराठी हम सीख गए हैं जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और भी कुछ मैसेजेस हैं लेकिन वक्त बीत रहा है, तो हम चाहते हैं कि आपको पहले गाने सुनवा दिए जाए। तो अब जो गाने सुनेंगे आप वो पंकज जी की फरमाइश का एक गाना होगा और एक गाना होगा आदर्श कनौजिया साहब की फरमाइश का। तो हम सुनते हैं सिलसिलेवार ढंग से दोनों गाने।

7:54 का वक्त और ये वक्त फिलहाल के लिए आज के लिए विदा लेने का, फिर किसी रोज आपसे मुलाकात होगी और इसी बात के साथ, इसी वादे के साथ कि इस बार जिन लोगों के नाम छूट गए हैं उनके नाम ज़रूर लिए जाएंगे और उनके गाने उस दौरान ज़रूर पेश किए जाएंगे जब दूसरी बार हम मुलाकात कर रहे होंगे आपसे। और इसी के साथ हमारे पास एक नाम और एक गाना इस शाम का आखिरी फरमाइश का गाना, वो है फिरोज़ साहब का, बहुत ही खूबसूरत सा गाना है। उस गाने के साथ हम विदा लेंगे और आपसे यही कहेंगे कि आप अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिए और मोहब्बत करते रहिए और क्या कहें, 107.1 FM रेनबो सुनते रहिए।

0: Tony Bennett over there. You know, in the 50s and the 60s, most of the soundtracks were done by Tony Bennett. Three of his movies and soundtracks won the Oscars. We're celebrating 100 years of Tony Bennett, 75 years of number one hits. The man won 20 Grammys until he passed away 4 years ago. He was still singing and releasing albums and winning Grammys. He became the oldest Grammy winner of all time at the age of 96 in 2023. Keep listening in. We've got the 100 greatest duets of all time coming up in a bit. Right now, it's time for the news in Hindi at 8:45, followed by the news in English at 9 p.m. And we'll be back with more fabulous music on this radio station. Keep listening in.
1: I will leave you to learn that misery
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल में हुई प्रगति का श्रेय युवाओं को दिया। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। केंद्र ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता के लिए 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की अग्रिम राशि जारी की। भारत और चीन ने सिक्किम के नाथुला दर्रे से सीमा पार व्यापार फिर से शुरू किया। ओडिशा में बाढ़ का प्रकोप जारी, केरलम में लगातार बारिश से तबाही, 6 लोगों की मौत। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी में जैस्मिन लैम्बोरिया तथा प्रीति पवार ने और पैरा एथलीट सोमन राणा ने शॉट पुट में स्वर्ण पदक जीता। 7 भारतीय मुक्केबाज आज फाइनल में खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयां तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
4: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था।
4: स्वामी विवेकानंद जी युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे। उन्होंने स्वयं ये देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था। उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की है। आज युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है, भारत के युवाओं के सामर्थ्य से।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए।

0: ये हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में 650 से ज्यादा नई यूनिवर्सिटीज बनी है। पिछले 12 वर्षों में करीब 14,000 नए कॉलेज बने हैं। 4,000 से ज्यादा नई ITI बनाई गई है। 9 नए IIM, 7 नई IIT और 13 नए MBBS स्थापित किए गए हैं। आज देश में MBBS की सीटें करीब 1,40,000 हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 823 हो गई है।
0: श्री मोदी ने कहा कि खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स ने युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने का अवसर दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीतारामा राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में NDA सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं।
1: मुझे पूरा विश्वास है आज यहाँ जितने भी प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है, जिनकी नींव रखी गई है, वो सारे प्रोजेक्ट स्वर्ण आंध्रा और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में बहुत बड़ा योगदान देंगे। आंध्र प्रदेश विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा ऊर्जा स्रोत बन रहा है। मैं एक बार फिर इन सभी परियोजनाओं के लिए आंध्र प्रदेश के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं।
0: प्रधानमंत्री कल नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही नशे के खिलाफ 100 सप्ताह का देशव्यापी जन भागीदारी अभियान शुरू हो जाएगा। इस कार्यक्रम में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दौरान बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता देने के लिए राज्य आपदा मोचन कोष के केंद्रीय हिस्से की अग्रिम राशि के रूप में 2,117,85,00,000 रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ प्रभावित 7 राज्यों में से हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और नागालैंड को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है।
2: बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए स्वीकृत सहायता के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को वित्त वर्ष 2026-27 की पहली किस्त की अग्रिम राशि के रूप में 44,55,00,000 रुपए जारी किए जाएंगे। वहीं असम के लिए पहली किस्त के रूप में 379,35,00,000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जबकि गुजरात को 500,00,000 रुपए जारी किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश, जिससे वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है, उसे दूसरी किस्त की अग्रिम राशि के रूप में 193,95,00,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। वहीं ओडिशा को दूसरी किस्त के रूप में 500,00,000 रुपए जारी किए गए हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र के लिए पहली किस्त की अग्रिम राशि के रूप में 500,00,000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस मंजूरी का उद्देश्य बाढ़ प्रभावित राज्यों में जारी राहत और बचाव कार्यों को और सुदृढ़ करना है। प्रिया मंडल के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने आज राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किस्त जारी की है। यह राशि राज्यों को हर महीने मिलने वाली किस्त के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्यों को पूंजी और विकास व्यय में तेजी लाने के लिए अधिक अवसर प्रदान करना है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर नीट PG 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा 30 अगस्त को आयोजित की जाएगी। श्री नड्डा ने कहा कि परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और अभ्यर्थी हितैषी बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को आज महाराष्ट्र के पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर गृहमंत्री अमित शाह ने यह पुरस्कार प्रदान किया। श्री शाह ने कहा कि श्री डोभाल ने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने में उल्लेखनीय योगदान दिया है।
3: भारत की सेना को आधुनिक बनाना, समसामयिक परिवर्तन करना, सेना के अंदर टेक्नोलॉजी और वीरता दोनों का एक अद्भुत फाइन ट्यूनिंग करना, कई प्रकार के बड़े फैसले अजीत जी के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी ने लिए हैं।
0: दिल्ली भाजपा ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल

0: गांधी, निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद और अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ संसद परिसर में कल धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। नई दिल्ली से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने आरोप लगाया कि संसद परिसर के मकर द्वार के पास हुए प्रदर्शन के दौरान विपक्ष ने धार्मिक आस्था का मजाक उड़ाया, सनातन संस्कृति का अपमान किया और संत समाज का अनादर किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। एक रिपोर्ट।
1: पूर्वी सिक्किम में 14,000 फुट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित नाथुला दर्रा सदियों से भारत को तिब्बत से जोड़ने वाले पुराने व्यापार मार्ग का एक प्रमुख हिस्सा रहा है। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद बंद हुआ सीमा व्यापार 2006 में औपचारिक रूप से फिर से शुरू हुआ। 2020 में कोविड महामारी के कारण रोके जाने तक ये बिना किसी रुकावट के जारी रहा। इसका फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। सीमा व्यापार सोमवार से बृहस्पतिवार तक चलेगा। इसमें गेट सवेरे 7:30 बजे खुलेंगे और हर रजिस्टर्ड व्यापारी को हर दिन 2,00,000 रुपए तक का व्यापार करने की अनुमति होगी। गंगटोक से मैनाक चटर्जी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: बलूच यकजहती कमेटी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में चल रहे जन आंदोलन पर पाकिस्तानी अधिकारियों की क्रूर कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। समिति के अनुसार यह दमनकारी रवैया असहमति की आवाजों को कुचलने की व्यापक सरकारी नीति का हिस्सा है। पाकिस्तानी सेना की हिंसक कार्रवाई में 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। मौसम विभाग ने कल कर्नाटक, केरलम, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर बढ़ने से कटकपुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा और खुर्दा जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। हीराकुंड बांध से 22 फाटकों के माध्यम से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। 10 निचले जिलों में हाई अलर्ट जारी है। 8,00,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 2,59,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। केरलम में लगातार मूसलाधार बारिश के कारण भूस्खलन और जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग ने आज 9 जिलों के लिए रेड अलर्ट और 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बारिश से 6 लोगों की मौत हो गई। प्रभावित जिलों में 65 राहत शिविरों में 1400 से अधिक लोगों को पहुंचाया गया है। और अब ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल की खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
2: राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने आज शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक देश के नाम किए। मुक्केबाजी में भारत ने 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। प्रीति ने महिलाओं की 54 किलोग्राम प्रतियोगिता में कनाडा की स्कारलेट समाना डेल गाडो को 5-0 से हराया। वहीं जैस्मिन ने महिलाओं के 57 किलोग्राम भार वर्ग में माइकेला वॉल्श को 5-0 से शिकस्त देकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग में जादूमणि सिंह ने रजत पदक जीता।
3: अच्छा लग रहा है, मेरा पहला कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल आया तो काफी खुश। अगला कंपटीशन में से और ज्यादा फोकस करूंगा और अच्छा आने वाला कंपटीशन में अच्छा मेडल ले आऊंगा। मेडल मैं मेरा अंकल को दे करूंगा और BFI को, SAI को और पूरा इंडिया जो हमारा टीम कोचेस है उन सबको दे करूंगा।
2: दिन का तीसरा स्वर्ण पदक आज एथलेटिक्स से आया, जब सोनम राणा ने पुरुषों के शॉटपुट F57 वर्ग में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया। शुभम जुयाल ने रजत पदक जीता। पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रावेल ने रजत पदक अपने नाम किया। सेल्वा प्रभु तिरुमरन ने कांस्य पदक हासिल किया।
0: इसके अतिरिक्त 7 भारतीय मुक्केबाज भी आज फाइनल में खेलेंगे। वोल वॉल्ट फाइनल में देव कुमार मीणा और कुलदीप कुमार की चुनौती होगी। 5000 मीटर दौड़ के

0: फाइनल में गुलवीर सिंह ट्रैक पर उतरेंगे। मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले फाइनल में भारतीय टीम खेलेगी। जम्मू और श्रीनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 44 बंद होने के कारण रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए बडगाम और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह विशेष सेवा सड़क संपर्क बाधित होने से प्रभावित यात्रियों को राहत देने और कश्मीर तथा जम्मू के बीच सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल में हुई प्रगति का श्रेय युवाओं को दिया। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। केंद्र ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता के लिए 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की अग्रिम राशि जारी की। भारत और चीन ने सिक्किम के नाथुला दर्रे से सीमा पार व्यापार फिर से शुरू किया। ओडिशा में बाढ़ का प्रकोप जारी। केरलम में लगातार बारिश से तबाही, 6 लोगों की मौत। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी में जैस्मिन लैम्बोरिया तथा प्रीति पवार ने और पैरा एथलीट सोमन राणा ने शॉट पुट में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi inaugurates Swami Vivekananda Cultural Youth Centre in Mysuru, credits Indian youth for progress in science, technology and sports. Prime Minister launches development projects worth 18,000 crore rupees in Andhra Pradesh. Centre approves advance release of over 2,000 crore rupees as assistance to flood-affected states. India and China resume cross-border trade through Nathula Pass in Sikkim. Flood fury continues in Odisha, 6 people killed in Kerala as incessant rain causes widespread havoc. And in Commonwealth Games, boxers Jasmine Lamboria and Preeti Pawar win gold medals. Para-athletes Oman Rana bags gold in men's shot put F57. Prime Minister Narendra Modi has credited Indian youth for achieving progress in the areas of science, technology and sports and called upon them to contribute in the areas of cleanliness drive, conservation of water and natural resources and gift Indian artifacts. He was speaking after inaugurating the Swami Vivekananda Cultural Youth Centre, Vivek Smarak, in Mysuru today. The Prime Minister emphasized that Swami Vivekananda's vision was to mentor our youth and empower them to work for nation building.
2: Swami Vivekananda ji युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे। उन्होंने स्वयं ये देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था। भारत के युवा भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की है। भारत का जो युवा कभी जंजीरों में था, आज वो युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से।
1: Mr. Modi further said the capabilities of our youth has transformed India into the second largest mobile phone market. New strides are being made in semiconductor manufacturing, innovations and in private sector space missions. Moreover, Mr. Modi underscored the progress achieved in the last 12 years in the field of education by establishing new universities and colleges, including ITIs, IIMs, IITs, AIMS and increasing medical seats as well.
2: पिछले 12 वर्षों में 650 से ज्यादा नई यूनिवर्सिटीज बनी है। पिछले 12 वर्षों में करीब 14,000 नए कॉलेज बने हैं। 4,000 से ज्यादा नई ITI बनाई गई, 9 नए IIM, 7 नई IIT और 13 नए MP स्थापित किए गए हैं। आज देश में MBBS की सीटें करीब

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के

0: तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में 650 से ज्यादा नई यूनिवर्सिटीज बनी है। पिछले 12 वर्षों में करीब 14,000 नए कॉलेज बने हैं। 4,000 से ज्यादा नई ITI बनाई गई, 9 नए IIM, 7 नई IIT और 13 नए MBA स्थापित किए गए हैं। आज देश में MBBS की सीटें करीब 1,40,000 हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 823 हो गई है।
0: श्री मोदी ने कहा कि खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स ने युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने का अवसर दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में NDA सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। गृहमंत्री अमित शाह ने दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता देने के लिए राज्य आपदा मोचन कोष के केंद्रीय हिस्से की अग्रिम राशि के रूप में 2,117 करोड़ 85 लाख रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। बाढ़ प्रभावित 7 राज्यों में से हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और नागालैंड को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर बढ़ने से कटक, पुरी, जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा और खुर्दा जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। हीराकुंड बांध से 22 फाटकों के माध्यम से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। 10 निचले जिलों में हाई अलर्ट जारी है। 8 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 2,69,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी और अन्य संगठनों को मिली विदेशी फंडिंग की जांच शुरू कर दी है। गृह राज्य मंत्री पंकज भोयर ने कहा कि जांच की जा रही है कि विदेश से प्राप्त राशि का इस्तेमाल कैसे किया गया, जबकि प्रवर्तन निदेशालय भी समानांतर जांच कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर राशि का इस्तेमाल गैर कानूनी गतिविधियों के लिए किया गया है तो उचित कार्रवाई की जाएगी। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 12 स्वर्ण, 16 रजत और 8 कांस्य पदकों सहित कुल 36 पदकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लेम्बोरिया, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, प्रिया घंघास, अरुधंती चौधरी और सचिन सिवाच ने अपने अपने फाइनल मुकाबलों में शानदार जीत हासिल करते हुए स्वर्ण पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दर्द हल्का है, सांस भारी है। दर्द हल्का है, सांस भारी है, जिए जाने की रस्म जारी है। आपके बाद हर घड़ी हमने आपके साथ ही गुजारी है।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
1: जी हाँ, बिल्कुल सही हैं आप एफएम रेनबो के साथ दिल से दिल तक, और मैं नविता हूँ आपके साथ दिल से दिल तक के सफर में।

वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, शिकायत का ये अंदाज भी खूब है। हर पल का, हर मुलाकात का हिसाब है यहाँ। वक्त कीमती जो होता है इश्क में, और शिकायतें भी इसलिए क्योंकि मालूम है यादों का कारवां वहाँ भी कुछ यूं ही है।

तार ऐसे जुड़े हैं आंखों के, सोचता वो है, बोलता मैं हूँ। तार ऐसे जुड़े हैं आंखों के, सोचता वो है, बोलता मैं हूँ। छप रही है अभी किताब दिल, सरवरक वो है, हाशिया मैं हूँ।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: हिमालय की गोद से लेकर
3: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
2: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
3: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
2: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
3: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
2: तो सुनना ना भूलें
3: रेनबो डेस्टिनेशंस
2: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

जी हाँ, बिल्कुल सही हैं आप। आप FM रेनबो के साथ दिल से दिल तक, और मैं रविता हूँ आपके साथ दिल से दिल तक के सफ़र में। कहीं तो कोई होगा जिसको अपनी भी ज़रूरत हो, कहीं तो कोई होगा जिसको अपनी भी ज़रूरत हो, हर एक बाजी में दिल की हार हो, ऐसा नहीं होता।

0: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
1: ठीक है,
0: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपोजिट करना होगा। अच्छा, कैसे डिपोजिट करेंगे? डिपोजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
2: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
3: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
3: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
2: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
3: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
2: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
3: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
2: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
3: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
2: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
5: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: और दोस्तों, अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिल से दिल मिलाते रहिए। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए FM रेनबो के साथ, दिल से दिल तक।

शफक कहते हैं किरणों को, रेस और धनु रेनबो, महताब चंद्रमा, घटाएं तो आपको मालूम है, शफक धनुक महताब घटाएं, तारे नगमे बिजली

आकाशवाणी रेनबो पर अब प्रस्तुत हैं अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल में हुई प्रगति का श्रेय युवाओं को दिया। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। केंद्र ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता के लिए 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की अग्रिम राशि जारी की। भारत और चीन ने सिक्किम के नाथुला दर्रे से सीमा पार व्यापार फिर से शुरू किया। महाराष्ट्र सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी और अन्य संगठनों को मिली विदेशी फंडिंग की जांच शुरू कर दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान जहाजों पर हमले बंद कर वार्ता शुरू नहीं करता है तो अमेरिका हमलों में तेजी लाएगा। मौसम विभाग ने आज कर्नाटक, केरलम, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और

सिक्किम में अधिक से अधिक वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी में साक्षी चौधरी, प्रिया गंगास, अरुंधति चौधरी, जैस्मिन लैम्बोरिया, प्रीति पवार, सचिन सिवाच तथा अंकुश ने और पैरा एथलीट सोमन राणा ने शॉर्ट पुट में स्वर्ण पदक जीते। भारत 13 स्वर्ण, 16 रजत और 8 कांस्य पदकों सहित कुल 36 पदकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी रेनबो पर अब हम प्रस्तुत कर रहे हैं आपके लिए कार्यक्रम जीरो आर शो। तो आइए जुड़ जाइए और बनाइए अपनी रात को बहुत ही बेहतर।
1: प्लैटिनम रिकॉर्ड शहर टेक वन।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा था इनके नाम है।

0: सर जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। अच्छा, डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपको बिना क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
2: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
3: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
2: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
2: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
2: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
2: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
4: हिमालय की गोद से लेकर
5: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
4: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
5: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
4: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
5: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
4: तो सुनना ना भूलें
5: रेनबो डेस्टिनेशंस
4: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए। यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

आकाशवाणी रेनबो पर अब प्रस्तुत हैं अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल में हुई प्रगति का श्रेय युवाओं को दिया। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। केंद्र ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता के लिए 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की अग्रिम राशि जारी की। भारत और चीन ने सिक्किम के नाथुला दर्रे से सीमा पार व्यापार फिर से शुरू किया। महाराष्ट्र सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी और अन्य संगठनों को मिली विदेशी फंडिंग की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली सरकार की लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल आज से शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने आज कर्नाटक, केरलम, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अधिक से अत्यधिक वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी में साक्षी चौधरी, प्रिया गंगास, अरुंधति चौधरी, जैस्मिन लेम्बोरिया, प्रीति पवार, सचिन सिवाच तथा अंकुश पंघाल ने और पैरा एथलीट सोमन राणा ने शॉर्ट पुट में स्वर्ण पदक जीते। भारत ने 13 स्वर्ण, 16 रजत और 8 कांस्य पदक प्राप्त किए हैं और इस तरह कुल 37 पदकों के साथ भारत चौथे स्थान पर पहुंच गया है। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

आकाशवाणी रेनबो पर आप लेकर आए हैं हम आपके लिए हमारा अगला कार्यक्रम जो कि है सुहानी रात। तो बने रहिए इस सुहानी रात में हमारे इन सुहाने गीतों के साथ।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो

0: डेस्टिनेशन
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
2: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM

बागों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

आकाशवाणी रिनबो पर अब प्रस्तुत हैं अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल में हुई प्रगति का श्रेय युवाओं को दिया। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। केंद्र ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता के लिए 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की अग्रिम राशि जारी की। भारत और चीन ने सिक्किम के नाथुला दर्रे से सीमा पार व्यापार फिर से शुरू किया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर नीट पीजी की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा 30 अगस्त को आयोजित की जाएगी। आयकर विभाग ने बताया कि वर्ष 2026-27 के लिए 31 जुलाई तक 5,90,00,000 से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए। मौसम विभाग ने आज कर्नाटक, केरलम, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अधिक से अत्यधिक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी में साक्षी चौधरी, प्रिया गंगास, अरुंधति चौधरी, जैस्मिन लैम्बोरिया, प्रीति पवार, सचिन सिवाच तथा अंकुश पंगाल ने और पैरा एथलीट सुमन राणा ने शॉर्ट पुट में स्वर्ण पदक जीते। पदक तालिका में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 39 पदक लेकर चौथे स्थान पर पहुंच गया है। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

आकाशवाणी रेनबो पर अब हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ ऐसे गीत जिन्हें आप कभी भूल नहीं पाते हैं। जी हाँ, कार्यक्रम का नाम है भुलाए ना बने।

0: अरे आनंद बाबू, आइए आइए आनंद बाबू, आप और इस मंदिर में मुझे पहचाना नहीं?
1: कहिए ना, आप रुक क्यों गए?
2: गाओ ना बेटी, गाओ।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
0: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
0: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
0: म्यूजिक मस्ती।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

आकाशवाणी रेनबो पर अब प्रस्तुत हैं अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल में हुई प्रगति का श्रेय युवाओं को दिया। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। केंद्र ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता के लिए 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की अग्रिम राशि जारी की। भारत और चीन ने सिक्किम के नाथुला दर्रे से सीमा पार व्यापार फिर से शुरू किया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर नीट पीजी की तैयारियों की समीक्षा की। ये परीक्षा 30 अगस्त को आयोजित की जाएगी। वस्तु और सेवा कर संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पिछले महीने ये 2,11,205 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें कम कर दी हैं। मौसम विभाग ने आज कर्नाटक, केरलम, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अत्यधिक वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में भारत की तन्वी शर्मा का मुकाबला आज वियतनाम की थुई लिन गोयेन से होगा। राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी में साक्षी चौधरी, प्रिया गंगास, अरुंधति चौधरी, जैस्मिन लमोरिया, प्रीति पवार, सचिन सिवाच तथा अंकुश पंघाल ने और शॉर्ट पुट में पैरा एथलीट सोमन राणा ने स्वर्ण पदक जीते। पदक तालिका में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंचा। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: नवराई माझी लाडाची लाडाची ग, आवडतीला चंद्राची चंद्राची ग।

0: कौवे की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

नमस्कार, प्रस्तुत है अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल में हुई प्रगति का श्रेय युवाओं को दिया। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। केंद्र ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता के लिए 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की अग्रिम राशि जारी की। भारत और चीन ने सिक्किम के नाथुला दर्रे से सीमा पार व्यापार फिर से शुरू किया। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सैदोव बख्तियार ओदिलोविच आज से इस महीने की 5 तारीख तक भारत के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। वस्तु एवं सेवा कर संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और पिछले महीने ये 2,11,205 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने आज कर्नाटक, केरलम, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अत्यधिक वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। टेनिस में भारत के रामकुमार रामनाथन और विजय सुंदर प्रशांत ने बॉन ओपन 2026 में डबल्स का खिताब जीता। राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी में साक्षी चौधरी, प्रिया घंघास, अरुंधति चौधरी, जैस्मीन लेम्बोरिया, प्रीति पवार, सचिन सिवाच तथा अंकुश पंघाल ने और शॉटपुट में पैरा एथलीट सोमन राणा ने स्वर्ण पदक जीते। पदक तालिका में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंचा। तो ये थी अब तक के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सारेगामा।

अतीत से बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे। रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शन।
1: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया

वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

लोगों से घर की फुलवारी तक। हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान, इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।